0: प्रेजेंटेशन वाचन स्वर दीपा सिंह। शाजापुर जिले में किसान खरीफ फसल की बुआई की तैयारियों में लग गए हैं। जिले में हर साल करीब 3 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बोई जाती है। किसान अब अच्छे मॉनसून का इंतजार कर रहे हैं। पर्याप्त बारिश होने पर अच्छी पैदावार की उम्मीद जताई जा रही है। दूसरी तरफ शुजालपुर और काला पीपल विकासखंड के किसानों के लिए प्राकृतिक और जैविक खेती पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती के सिद्धांत, कम लागत में अधिक उत्पादन और मृदा स्वास्थ्य संरक्षण की तकनीक की जानकारी दी। खेत बचाओ अभियान के तहत मृदा और जल संरक्षण के महत्व पर भी चर्चा हुई। खेती की तैयारियों के बीच जिले के स्कूल भी बच्चों की चहल पहल से गुलजार हो गए हैं। स्कूल चले अभियान के तहत नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हुई है। नए बस्ते, किताबें और कक्षाओं को लेकर बच्चों में उत्साह दिखाई दे रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के संदेश के साथ जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया गया। शाजापुर में हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। इस दौरान स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। इसी क्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 41 प्रतिभा बालिकाओं का सम्मान किया गया। उन्हें कुल 2,05,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि दी गई। कलेक्टर ने बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के टिप्स भी दिए। समाज में जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों के बीच काला पीपल के बेरावल गांव में बावड़ी उत्सव आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन का संदेश दिया गया। ग्रामीणों ने जल स्रोतों को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाते हुए प्रशासन ने बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ सख्ती दिखाई है। होटल ढाबों और औद्योगिक इकाइयों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। विकास के मोर्चे पर भी जिले के लिए अच्छी खबर है। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन में शामिल होने से शाजापुर के 546 गांव को फायदा मिलेगा। इससे निवेश, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होने की उम्मीद है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित हुई। टीकाकरण, आयुष्मान कार्ड, मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य सुविधाओं की निगरानी के तहत कलेक्टर रिजु बाफना ने ज्योति नगर में करीब 22 लाख रूपये की लागत से बने मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भवन निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण न होने पर कलेक्टर ने नगरपालिका इंजीनियर पर नाराजगी जताई। कलेक्टर ने सीएमएचओ डॉ. कमला आर्य को समिति बनाकर जांच करने और दोषी इंजीनियर से राशि वसूलने के निर्देश दिए। दूसरी तरफ जिले में मुस्लिम समाज के मोहर्रम पर्व की शुरुआत हो गई है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से सौहार्द और शांति के साथ पर्व मनाने की अपील की। युवाओं और समाज को नशे से दूर रखने के लिए जिले में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मास्टर वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण दिया गया है। श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए श्रम विभाग ने बिना लाइसेंस काम करने वाले ठेकेदारों पर निगरानी बढ़ा दी है। सभी ठेकेदारों के लिए पंजीयन और लाइसेंस अनिवार्य बताया गया है। महिला और बाल विकास विभाग ने कुपोषण मुक्ति अभियान की समीक्षा की है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जा रहे पोषण आहार की गुणवत्ता की जांच की गई। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मत्स्य विभाग ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मत्स्य प्रजनन काल को देखते हुए जिले में 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सिंहस्थ के समय उज्जैन और शाजापुर जिले में होने वाले धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए पुलिस ने एक नई पहल की है। अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत के निर्देशन में यातायात पुलिस ने यातायात मित्र फोर्स गठित करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत 18 साल से अधिक उम्र के जागरूक छात्र छात्राओं और युवाओं का पंजीयन किया जाएगा, जो यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा जागरूकता में पुलिस का सहयोग करेंगे। जन कल्याण शिविरों में भी लोगों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। विभिन्न विभागों ने नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ भी दिया। जिले की सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने के लिए प्राचीन पांडुलिपियों का समीक्षा और डिजिटलीकरण किया जाएगा। ज्ञान भारतम मिशन के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है। जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों को CPR और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया गया। करीब 300 लोगों ने इसमें भाग लिया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे शाजापुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत पराशर का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का।
2: मीडिया वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज होनी IR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं सबरंग के तहत मिश्रित संगीत कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दिलराज कौर की इस गजल के साथ।

अभी आप सुन रहे थे दिलराज कौर की आवाज में ये गजल। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं निर्मला कुमारी की आवाज में गीत।

0: ये थी निर्मला कुमारी, इनकी आवाज में अभी आपने सुना गीत सबरंग के तहत मिश्रित संगीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से। मिलते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
0: और देखिए श्रोताओं, वादे के मुताबिक हाजिर हैं छोटे से अंतराल के बाद मिश्र संगीत में। अब सुनते हैं ये फिल्मी धुन।

श्रोताओं, हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस धुन को समझ गए होंगे कि ये कौन सा गाना है। कभी कभी फिल्म के गीत की ये धुन अभी आपने सुनी। चलिए, सवरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से, और अब सुनते हैं ये फिल्मी गीत। आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की। फिल्म 1975 में ये फिल्म आई थी, खेल खेल में। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा है गुलशन बावरा ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

खेल खेल में इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे आशा जी के साथ किशोर कुमार को। बोल गुलशन बाबरा के थे और संगीत आरडी बर्मन का। कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं भजन।

अभी आप सुन रहे थे शैलेंद्र सिंह और साथियों की आवाज में ये भजन। और श्रोताओ, इस भजन के साथ ही सवरंग के तहत मिश्रित संगीत का कार्यक्रम आप समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। और आप सभी श्रोताओं को इंतजार होगा अपने मनपसंद कार्यक्रम, जो कि है श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का आपकी पसंद। तो श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी रेडियो दोस्त सविता मिश्रा। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। साथ ही किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बदन मेरा मिट्टी का और सांस मेरी उधार है। घमंड करूं तो किस बात का, यहां पे हम सभी तो किराएदार हैं, है ना श्रोताओ? तो जब हम सभी किराएदार हैं तो फिर किस बात का घमंड। तो बस खुश रहिए और खुश रखिए। और देखिए, हम तो आप सभी को खुश रखते हैं अपने आकाशवाणी से बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रसारित करके और फिल्मी गीतों के माध्यम से। तो चलिए इसी फहरिस्त में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला गीत।

जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली। इस फिल्म का ये शुरुआती नगमा भी आपने सुना लता जी की आवाज में, और इस गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस प्यारे से गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता इस तरह से हैं, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष और उनके परिवार के सभी सदस्य, राम देवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदाबख्श खलीफा, इसी गीत को पसंद किया था ग्राम बिटोरा तहसील से बड़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश लोकेंद्र सिंह गुर्जर, सूर्यांश गुर्जर, रामवीरग यशपाल और उनके परिवार के सभी सदस्य, ये श्रोता है सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुराना और उनके सभी मित्रगण। ये पत्र है गांव परसा टोला जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से, ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, खुमेंद्र मसिया, तुषारणी मसिया और उनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को पसंद किया था, ये मेल हम तक आया है अकोला से, श्रोता हैं सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद कुमार गौरव, आरव और अर्पिता। ये हैं हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोरखे, श्रीमती नंदा हनुमान, उत्तम जमदाड़े और उनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को पसंद किया है, ये मेल आया है हम तक हरियाणा से अंकित कांगड़ा।

मोनी कांगड़ा, प्रिंस बूट सीताराम, साहिल कांगड़ा और उनके परिवार के सभी सदस्य, चर डोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, जय किशन, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी माया साहू और उनके परिवार के सभी सदस्य, जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से। इसी फिल्म के गीत को पसंद किया था मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। तो चलिए श्रोताओ, आप सभी की पसंद हुई पूरी करते हैं और श्रोताओं की पसंद को पूरा ये अगला गीत सुन के। ये अगला गीत हमने लिया है फिल्म मेरे हमसफर से। आवाजें हैं लता जी के साथ संगीत आवाज के धनी मुकेश जी और इस गीत को रचा है आनंद बख्शी ने, संगीत तैयार किया है कल्याण जी आनंद जी ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं चंद्रनगर सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली, सुरेश नारंग, उनके परिवार के सभी सदस्य और जसपुर उत्तराखंड से। ये श्रोता पत्र आया है, ये पत्र है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर, उनके परिवार के सभी सदस्य। और ये श्रोता है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश और उनके परिवार के सभी सदस्य। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श बेगम, राबिया शेख, रहीम मुन्ना। और उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। ये श्रोताओं मेल हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं और ये पत्र है साथ में ग्राम बगबुड़वा पथरिया से हमारे श्रोता है नरेल नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका, अच्छा नाम है, और उत्कर्ष नेताम। तो चलिए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं आपकी पसंद कार्यक्रम का ये गीत फिल्म मेरे हमसफर से।

किसी राह पर किसी मोड़ में छोड़ ना देना हम सफर। खूबसूरत सा ये गीत लता जी और मुकेश जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे। श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से। चलिए बढ़ते हैं आगे और ये अगला गीत है काजल फिल्म से, आशा जी की आवाज है। साहिल लुधियानवी की शब्द रचना है, रवि का संगीत है। पसंद करने वाले हमारे श्रोता इस तरह से हैं, पुखराज बड़गुजर या राजस्थान से, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, फरसा राम सोलंकी, श्याम लाल चौहान, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का, ग्राम पोस्ट बिरखेरा, जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से, मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल और उनके सभी मित्रगण, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना शिनी विपुल, ये मेल हम तक आया है। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू और उनके परिवार के सभी सदस्य, धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशा सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू और उनके परिवार के सभी सदस्य, ये है मोहल्ला हलवायान शेरकोट जिला बिजनौर से। पसंद करने वाले श्रोता है मोहम्मद बकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर और उनके सभी मित्रगण। ये पत्र है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश और उनके परिवार के सभी सदस्य, ग्राम ननूरा श्रीनगर उत्तर प्रदेश से बलराम दास अहिरवार, श्रीमती कस्तूरी, आराधना, सोनिका, उपमा और नैतिक वर्मा। ये पत्र आया है राजावत कॉम्प्लेक्स साजापुर से। श्रोता है मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और पूरा राजावत परिवार। तो श्रोताओं ये तो थे पत्र। अब आपको बता दें कुछ और मेल हम तक आए हैं। ये है छत्तीसगढ़ से देव शंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया, पोता मास्टर अल कबीर। तो चलिए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं काजल फिल्म का गीत आशा जी की आवाज में।

तो रमन दर्पण कहलाए काजल फिल्म का यह गीत अभी आप सुन रहे थे आशा जी की आवाज में। आपकी पसंद कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से। चलिए इसी फहरिस्त में बढ़ते हैं आगे और ये अगला गीत है लोफर फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की है। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता इस तरह से हैं, कवर कॉलोनी बड़वा जिला खरगोन एमपी से प्रवीण शेमाली, मीना शेमाली गांव पाढ़रकड़वा से अनिल बुरांडे, उषा अनुश्री धनशी नावा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरब, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु ये मेल हम तक आए हैं। और ये पत्र है वरुण जोलका से महेंद्र सरकटे, विजया और मिलिंद और उनके परिवार के सभी सदस्य, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली, कुमारी डब्बू डब्लू डोम और उनके परिवार के सभी सदस्य, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा, उल्लाह आसमा और उनके परिवार के सदस्य, सरगुजिया मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशम, अदीबा और पूरा थापा परिवार। ये पत्र आया है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। एक पत्र और है, इसको भी उठाते हैं। ये कहाँ से है? ये आया है जसपुर उत्तराखंड से, बहुत दूर से श्रोताओं ये पत्र आया है।

रियासत हुसैन सदकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, रानी तबस्सुम, रुखसार मोहम्मद आशिफ। तो चलिए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत लूफर फिल्म से।

लोफर फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। और देखिए श्रोताओ, ये है आपकी पसंद कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म छलिया से। आवाजें हैं लता मंगेशकर के साथ साथियों की। गीत को लिखा है कमर जलालाबादी ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। पसंद करने वाले श्रोता है महाराष्ट्र तो बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल और रामनिवास अग्रवाल। इसी गीत को पसंद किया सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, शव्या रामटेके परिवार के सभी सदस्य। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हेमकेश्वर साहू, करण साहू, चंपा साहू और उनके परिवार के सभी सदस्य। और एक मेल और है, ये रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश नंदिनी, मनीष मयंक और जानकी साहू।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बस कुछ ही देर में।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। पूर्वाह्न के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं मैं छाया पाठक। नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए बात करते हैं हमारे पहले श्रोता से। हेलो
2: हेलो
1: नमस्कार
2: नमस्कार, आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल है मैडम
1: जी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल, कौन बोल रहे हैं?
2: कालीचरण यादव।
1: कालीचरण यादव, फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। पसंद बताएं अपनी।
2: फिल्म का नाम है खुली फिल्म का गाना सुनना। मुझे पीने का शौक नहीं, गाना बजाने।
1: मुझे
2: पीने का शौक नहीं, खुली फिल्म अमिताभ बच्चन की पिक्चर है ना।
1: जी जी
2: वही गाना सुनना, गाना पसंद है
1: जी। नमस्कार,
2: आप कौन बोल रही हैं?
1: छाया पाठक बोल रही हूँ।

0: हेलो हेलो हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, फोन करेंगी सुनी में आपका स्वागत है।
1: हेलो,
0: नाम बताएं
1: नमस्कार
0: अपना।
1: बहन जी।
0: नमस्कार।
1: जी, मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट राजेंद्र, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ बहन जी।
0: सैनी जी, स्वागत है। बताएं क्या करते हैं आप।
1: जी, मैं सिलाई करता हूँ और इस समय सिलाई कर रहा था, मशीन चला रहा था, नंबर भी डाल करता जा रहा था और यहाँ पे कॉल चालू हुई, मैं ध्यान नहीं दे पाया। मैंने देखा, अरे कॉल चालू है।
0: अच्छा जी,
1: जी
0: चलिए बताएं आज क्या सुनना चाहेंगे।
1: जी आज आप सुनवा देना, सावन आया बादल छाए, बुलबुल जय की फूल खिले। ये
0: अच्छा,
1: गीत है शायद साजन का घर।
0: साजन का घर
1: हाँ, उस फिल्म का गीत
0: जी, बिल्कुल सुनवाएंगे। लेकिन सावन तो अभी आया नहीं है।
1: बस इंतजार है, उसकी इंतजारी कर रहे हैं क्योंकि बहुत
0: जी
1: तेज गर्मी पड़ रही इस समय।
0: जी चलिए, कार्यक्रम में
1: और
0: फोन
1: एक
0: करने के लिए।
1: मुझे
0: हाँ।
1: रिक्वेस्ट है कार्यक्रम के बारे में, जो फोन वो का नाम बात आपकी, गीत हमारे कार्यक्रम चलता है, अगर उसमें लास्ट में जब जैसे कार्यक्रम समापन होता है और अगला दशा बता दिया जाए तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा, फिर बनेगा
0: सर,
1: कार्यक्रम।
0: होता
1: जी
0: क्या है,
1: जी
0: कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले अलग-अलग होते हैं, तो अब किसी को विषय पहले से पता नहीं रहता कि सामने वाला क्या लेने वाला है विषय अगला, इसलिए नहीं बता पाते। और सभी लोग तब भी नहीं सुनते हैं, नए श्रोता भी जुड़ते हैं या उस समय नहीं लगाते हैं फोन, तो किसी को पता नहीं पड़ पाता है, तो इसलिए उसी समय बताना रहता है। ठीक है,
1: ठीक,
0: चलिए, नमस्कार।
1: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार, नाम बताएं अपना।
1: खूबसूरत सी जिंदगी में खुशियां आपके चेहरे पर बरकरार रहे, और मेरी दुआ है रब से कि आपको खुशियों का नहीं बल्कि खुशियों को आपका इंतजार है।
0: इंतजार रहे। बहुत बढ़िया, आप नाम भी बता दें अपना।
1: हम आपके नियमित श्रोता बोल रहे हैं, पालदा नाका इंदौर से, मोहम्मद रफी मंसूरी।
0: मोहम्मद
1: मोहम्मद रफी मंसूरी, पालदा नाका इंदौर से। कैसे
0: जी,
1: मैडम आप?
0: बस बढ़िया है। आप बताएं, आप कैसे हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं मैडम।
0: अच्छा, तो आपका नाम जो है, तो आप मोहम्मद रफी के गाने पसंद करते हैं कि नहीं?
1: हाँ, गाने पसंद है मैडम, और बहुत ज्यादा गाने सुनते हैं उनके हम।
0: जी, तो आज भी कुछ वही सुनना चाहेंगे?
1: जी मैडम, आप कौन बोल रहे हैं?
0: छाया पाठक बोल रही हूँ।
1: जी, फिल्म का नाम है सुहाग, ये शशि
0: जी।
1: कपूर और अमिताभ बच्चन वाली। इसमें गाना है बॉबी परवीन बॉबी और शशि कपूर का है, क्या तुमको सुनाऊं मैं अपना फसाना, मैं तो बेघर हूं अपने घर ले चलो।
0: मैं तो बेघर हूँ, अपने घर ले चलो। जी बिल्कुल,
1: जी
0: सुनवाती। चलिए, फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: जी नमस्कार।

0: हेलो,
1: भूपेंद्र
0: नमस्कार
1: कुमार गुप्ता
0: जी। स्वागत है
1: जी,
0: कार्यक्रम में।
1: राजस्थान से। हाँ,
0: राजस्थान से बोल रहे हैं। अभी गर्मी कैसी है वहाँ?
1: बहुत गर्मी हो रही है अभी तो। हाँ,
0: गर्मी हो रही है जी। तो आप वहाँ पे क्या खेती किसानी करते हैं?
1: नहीं, खेती किसानी नहीं, हम जो सीनियर सिटीजन
0: अच्छा, सीनियर सिटीजन है
1: है।
0: जी। तो आज कार्यक्रम है, फोन करें, गीत सुने, तो आप क्या सुनेंगे
1: गाना बताऊं? ये
0: जी, बताएं।
1: सांझो सवेरे का है क्या?
0: आप तो फरमाइश
1: ओ
0: रख दें।
1: सजना मेरे घर आना।
0: अच्छा जी
1: हम तो पुराने गाने भी सुनते हैं, लिस्ट बना रखी है बहुत पहले से। लिया
0: जी, सुनिएगा कल आप ये गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: धन्यवाद।

0: फोन करें, गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: मैं जसराम जाटव बोल रहा हूँ मैडम, जोराई से जिला शिवपुरी।
0: जसराम जाटव।
1: हाँ
0: जी, पहले भी आपसे बात हुई है कई बार?
1: हाँ मैडम, बात हुई है। कौन कौन बोल रही मैडम तुम?
0: मैं छाया पाठक बोल रही हूँ।
1: हाँ मैडम, आपसे बात मेरी हो गई।
0: जी, आज क्या पसंद है आपकी?
1: हमको मैडम सुनना है दिलवाले पिक्चर का गाना रहेगा मैडम,
0: दिलवाले का कौन सा?
1: जीता हूँ जिसके लिए मरता।
0: आप अक्सर यही गाना सुनते हैं और कोई फरमाइश नहीं है आपकी?
1: नहीं मैडम, क्या वो मेरे को ये गाना अच्छा लगता है।
0: जी, चलिए,
1: नमस्कार
0: नमस्कार।
1: मैडम।

0: हेलो
1: हेलो, फोन करेंगी सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश
0: जी। हाँ
1: जी, फादर डे की पूरी मध्य प्रदेश टीम को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।
0: जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं
1: और बड़ी बहन आप बढ़िया हो
0: जी। बढ़िया है
1: जी। हम ग्राम छातर तहसील उदयपुरा जिला रायसेन से भगत जी बैरागी बात कर रहे हैं और आपको कार्यक्रम हम आकाशवाणी जबलपुर से सुन रहे हैं।
0: आकाशवाणी जबलपुर से सुन रहे हैं। साफ सुनाई दे रहा है?
1: हाँ बिल्कुल, जबलपुर तो एकदम क्लियर सुनाई देता और वहां पे भी साफ क्लियर सुनाई देता मध्य प्रदेश
0: अच्छा, तो आप रोज सुनते हैं?
1: जी। हम प्रतिदिन सुनते हैं रेगुलर 11 बजे 3 बजे तक।
0: 11 बजे से 3 बजे तक। शाम को नहीं सुनते?
1: हाँ, हम शाम को यो वाणी सुना था वापस 5:30 बजे तक मध्य प्रदेश को प्रसारण सुनाई देता जबलपुर पर
0: जी। चलिए, अब फिर गीत भी बता दीजिए, आज क्या सुनेंगे?
1: जी। फिल्म को नाम है बीवी नंबर वन और गाना के बोल है मुझे माफ करना ओम साई राम
0: बिल्कुल सुनाएंगे आपको।
1: जी।
0: फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।

0: हेलो।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालवी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रधान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी,
1: और सबसे पहले आपको योग दिवस की ढेर ढेर हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी मैडम,
0: क्या कर रहे थे इस समय?
1: आज मेरा मैडम ड्यूटी नहीं था, घर पे था, नहा था के वही घर का काम कर रहा था। कई केंद्रों में फोन किया, रिकॉर्डिंग में जुड़ा और प्रसारण भी सुन रहा था, लाइव में भी लगा, आपके केंद्र में भी रिकॉर्डिंग में जुड़ा
0: जी
1: हूँ, आकाशवाणी भोपाल में।
0: जी,
1: बातचीत हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा है और फोन लगा, अच्छा लगा। मौसम बेहाल है,
0: मौसम
1: परसों पानी गिरा
0: बेहाल
1: था,
0: है कि
1: बादल
0: अच्छा है
1: किया,
0: मौसम?
1: आज धूप किया है, बादल का नामो निशान नहीं है,
0: अच्छा, आज
1: जिस
0: धूप
1: तरह उलट
0: निकली।
1: पुलट मौसम हो रहा है।
0: चलिए, कोई बात नहीं, आज धूप है तो कल छाया मिलेगी। बताएं क्या
1: फिल्म
0: सुनेंगे आज?
1: का नाम है हादसा और गीत के बोल है योगा योगा, गायक अमित कुमार। ये गीत है मैडम।
0: जी।

0: महर्षियों का चेला, किसी की खातिर देखने आया हूँ आपका ये मेला।
1: महाराज?
0: Yes.
1: योगी?
0: That's right.
1: Welcome.
0: Thank you.
1: स्वागत।

0: जी हेलो, आकाशवाणी फोन का जी सुन करके हूँ
1: जी।
0: जी मैं मछेरा कला जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, पवन विश्वकर्मा।
1: पवन विश्वकर्मा
0: जी
1: जी, वहाँ पे क्या आपका व्यवसाय है, कारोबार है, दुकान है, खेती है, क्या करते हैं?
0: जी दीदी, हमारे खेती है, किसानी करते हैं।
1: खेती किसानी करते हैं, तो अभी क्या बोया, धान?
0: जी दीदी, अब धान।
1: अच्छा, तो पानी वानी आ रहा है बराबर?
0: जी दीदी, नलकूप है।
1: अच्छा, नलकूप से। बाकी बारिश का पानी?
0: जी बारिश हो रही, जब धान लगेगी बनने भरा जाएंगी, जब लगेगी धान।
1: अच्छा, अभी धान बोई नहीं है। बताएं, आज कार्यक्रम में आपकी पसंद कौन सी है?
0: दीदी आज हमको सुनना है, हम मैंने प्यार किया है, मुबारक हो तुमको ये सारी तुम्हारी।
1: जी
0: दीदी, मेरा फोन दीदी 4 महीने बाद लगा है मेरा।
1: अच्छा, ने प्रयास नहीं किया?
0: जी
1: प्रयास
0: हर दिन करता था, लगती नहीं थी कॉल।
1: अच्छा, चलिए अच्छी बात है, आप इतने समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन अब आपका कॉल लग गया। इसी तरह अगर प्रयास करते रहिए, कभी ना कभी कॉल लगता ही है ना। फोन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।

0: हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी। नाम बताएं अपना,
1: अनोखे सिंह
0: कहाँ से?
1: जिला धार
0: धार से। पसंद बताएं अपनी
1: पर्सन। राम जी की लीला है निहारी। सर
0: फिल्म कौन सी है?
1: ये फिल्म का तो नहीं, बाकी ये बहुत अच्छा गाना है, आ सकता है।
0: सुनवाते हैं। नमस्कार।
1: धन्यवाद सर जी।

0: कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: हाथे गांव से बोल रहा था गोविंद जलोदिया।
0: गोविंद जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी बताएं, कैसे हैं?
1: मैं बढ़िया है सर, पानी की रास्ता देख रहे हैं।
0: पानी का रास्ता देख रहे हैं आप? क्या सभी देख रहे हैं, हम सभी को इंतजार है पानी का। एक झलक दिखलाता है कभी और एकदम से चला जाता है ना। चलिए, तो पानी आप क्या बिल्कुल बरसा भी नहीं क्या?
1: नहीं, पानी छीटे छाटे आगे रह जाते हैं।
0: हाँ, ये बात सही है। तो आज क्या धूप निकली है?
1: हाँ,
0: ऐसा ही है इंतजार। खैर, ये भी कहते हैं इंतजार
1: जो
0: का
1: इंतजार में
0: फल
1: है
0: मीठा
1: वो
0: होता है।
1: मिलने में नहीं है फिर।
0: जी, अब देखिए इस बार किस तरह से बारिश होती है, कितनी होती है, बताएं
1: सर ये
0: कौन।
1: गाना था सर, वो जो है बहुत दिन से मतलब अटका हुआ है, बेजू बावरा का है सर, तू गंगा की मौज यमुना की धारा।
0: जी, तू गंगा की मौज में जमुना की धारा। जी, सुनवाएंगे आपकी पसंद का गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: इसके साथ ही कार्यक्रम फोन करें गीत सुने कार्यक्रम यही समाप्त करने की छाया पाठक को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुति छाया पाठक की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ ही उन्हें आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने संस्कृत श्लोक साझा करते हुए कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री डॉ एल मुरुगन आज प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉ मुरुगन शाम को भोपाल कलेक्टर के साथ बैठक करेंगे। डॉ मुरुगन कल देवास जिले के दौरे के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एक पोस्ट में कहा कि गरीबों, युवाओं और महिलाओं तथा किसानों के अटूट विश्वास से मध्यप्रदेश सशक्त और आत्मनिर्भर बन रहा है। हमारी सरकार अग्रणी मध्यप्रदेश की भावना के साथ हर वर्ग के कल्याण हेतु कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का 56वां स्थापना दिवस समारोह आज भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर अकादमी द्वारा प्रकाशन प्रगति पथ ब्रोशर और द्विमासिक पत्रिका रचना के विमोचन के साथ ही शिक्षाविदों को सम्मानित भी किया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक जबलपुर, रीवा और सागर संभाग के जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। प्री मानसून के चलते आज प्रदेश के 21 से अधिक जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 14 जुलाई से शुरू होने वाले आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए शुभमन गिल की कप्तानी में भारत की 15 सदस्यीय एक दिवसीय टीम की घोषणा कर दी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 12 बजे हैं और ये समय है आपके पसंद के गीतों से सजे कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। तो कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं अग्नि साक्षी के इस गीत के साथ, जिसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति ने, बोल समीर के हैं, संगीत नदीम श्रवण का है और पसंद है आप सभी श्रोताओं की। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल की। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म अग्नि साक्षी का ये गीत।

बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, माही, पूजा, छुटकी, शरद, पूनम, श्रेया और समस्त माखीजा परिवार, आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमेरखंड महाराष्ट्र से अभिजीत गुहाड़कर, सरिता गुहाड़कर, सिद्धांत गुहाड़कर, प्रिंस एकांश गुहाड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश, वैशाली, श्वेता, सुमित और ध्वनि गुहाड़कर। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म मन का गीत, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। बोल समीर के हैं, संगीत संजीव दर्शन का। लीजिए सुनिए।

कृष्णा। इस फिल्म का गीत सुनिए अलका याग्निक की आवाज में। बोल आनंदराज आनंद के हैं और संगीत है अनु मलिक का। फरमाइश करता है आप सभी सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया, कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली की।

घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का, तन्मय, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। आप सभी ने सुनना चाहा है आनंद बख्शी का लिखा कल्याण जी आनंद जी का संगीत से सजाया हुआ गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक और मनहर उदास ने, और फिल्म का नाम है त्रिदेव।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश का आखिरी गीत सुनिए, जिसे हमने लिया है फिल्म इश्क से। आवाजें कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की हैं। गीत लिखा है राहत इंदौरी ने और संगीतबद्ध किया है अन्नू मलिक ने। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की। साथ ही सुना चाहा है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने।

पिछली कड़ियों में आपने सुना कि धारा नगरी के महाराज द्युम्त्सेन ने राजकुमार विजय श्रवा को प्यार करने के कारण नर्तकी भुवन मोहिनी को देश निकाला दे दिया। राजमाता ने ताने कसे तो राजकुमार राजमहल छोड़कर चल पड़ा। उसे पता चला कि भुवन मोहिनी इंद्रप्रस्थ गई है, सो इंद्रप्रस्थ पहुंचकर यमुना तट पर एक आश्रम में ठहर गया। उसने खुद को धारा नगरी का एक श्रेष्ठ बताया ताकि वो कहाँ है ये राज परिवार को पता न चले। अब इसे संयोगी समझिए कि इंद्रप्रस्थ के राजा आदित्य सेन ने ही भुवन मोहिनी को आश्रय दे रखा था। राजा आदित्य सेन अपनी बहुत ही सुंदर पुत्री चंद्रहासिनी के लिए उपयुक्त वर की खोज में थे ही। उन्हें पता चला कि यमुना तट पर उनके आश्रम में एक श्रेष्ठी ठहरा हुआ है जो दिखने में श्रेष्ठी नहीं बल्कि कोई राजवंशी लगता है। उन्होंने पता लगाने के लिए नर्तकी भुवन मोहिनी को कहा। चंद्रहासिनी को राग दीपक रागिनी सिद्ध करने आश्रम जाना ही था। भुवन मोहिनी तो उसकी गुरु ही थी। दोनों वहां गए और जान गए कि वो आगंतुक विजय श्रवा ही है। चंद्रहासिनी का गायन सुनकर राजकुमार उस पर मुग्ध हो गया। जब दोनों रथ पर लौट रही थी तो राजकुमार ने दोनों को देखा भी। अब आगे की कथा सुनिए।

0: धारावाहिक भुवन मोहिनी की चौथी कड़ी में।
1: महाराज आदित्य सेन की जय हो। महाराज, नर्तकी भुवन मोहिनी आपके दर्शन चाहती हैं।
2: उसे अंदर ले आओ।
3: महाराज को प्रणाम।
2: कुछ पता लगा भुवन मोहिनी? राज उद्यान में ठहरने वाला युवक धारा नगरी के सर्वश्रेष्ठ का पुत्र है या सम्राट द्युमत सेन के उत्तराधिकारी, भारत के भावी सम्राट?
3: यही सत्य है महाराज, वो राजकुमार विजय श्रवा ही है।
2: अच्छा,
3: और आपको प्रसन्नता होगी ये जानकर कि ये सत्य राजकुमारी चंद्रहासिनी भी जान गई हैं।
2: राजकुमारी को कैसे ज्ञात हुआ?
3: उनके पास राजकुमार विजय श्रवा का चित्र पहले से ही है। वे चित्र के साथ मिलाकर पहचान गईं कि वो युवक वास्तव में राजकुमार ही हैं।
2: नर्तकी, आज तुमने मुझे वांछित प्रसन्नता दी है। ये लो तुम्हारा पुरस्कार।
3: धन्यवाद महाराज।
2: भावी सम्राट के सम्मान में समस्त राजकार्य स्थगित किए जाते हैं और इंद्रप्रस्थ में सर्वत्र महोत्सव मनाया जाएगा। नर्तकी।
3: आज्ञा महाराज।
2: तुम्हारे लिए आदेश है कि महोत्सव में तुम हमारे द्वारा दिए गए इन्हीं आभूषणों को धारण करके अपने नृत्य और संगीत से राजकुमार ब्रजेशवा और सारे सभासदों का मनोरंजन करोगी।
3: आदेश शिरोधारी है महाराज।
4: युवराज, युवराज, युवराज, तनिक बताइए तो परिसर में कौन आ रहा है आपसे मिलने?
5: भुवन मोहिनी।
4: भगवान करे इसका मिलन इस परिसर में तो क्या इस जन्म में भी आपसे ना हो।
5: कौन आ रहा है मित्र?
4: अरे मित्र, आपसे मिलने स्वयं महाराज आदित्य सेन आ रहे हैं।
5: महाराज आदित्य सेन कहाँ है?
4: वो देखिए।
5: महाराज आदित्य सेन को सादर प्रणाम।
6: प्रणाम राजकुमार विजय श्रवा। निश्चित ही आप अत्यंत गोपनीय विधि से यहाँ पर रुके थे, परंतु हमें ज्ञात हो गया। हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि आप अब हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए।
5: हमें स्वीकार है महाराज।
6: आभारी हूं युवराज। भारत के भावी सम्राट के सम्मान में इंद्रप्रस्थ नगरी में महोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर आप अपने समस्त साथियों सहित सादर आमंत्रित हैं।
4: मित्र, आमंत्रण स्वीकार करिए।
5: आपका निमंत्रण हमें स्वीकार है महाराज।
6: आइए राजकुमार, आपका आसन ये है।
5: धन्यवाद महाराज।
4: सारथ।
7: हाँ रण्यक।
4: कुछ समझ रहे हो?
7: अवश्य रण्यक, महाराज आदित्य सेन हमारे राजकुमार को अपना पाहुन बनाना चाह रहे हैं।
4: तात्पर्य ये कि हमने जो सोचा था सब कुछ उसके अनुरूप ही हो रहा है।
7: वो कैसे?
4: अरे युवराज का विवाह राजकुमारी चंद्रहासिनी जैसी अपूर्व सुंदरी से हो रहा है, तो फिर वो भला उस नर्तकी के मोह में क्यों पड़ेंगे?
7: ये तुमने ठीक कहा।
4: अब तो भगवान से बस इतनी विनती है कि बस कुछ दिन और भुवन मोहिनी को दूर रखें हमारे राजकुमार से।
8: शांत शांत, कृपया शांत रहें। महाराज आदित्य सेन और हमारे माननीय अतिथि राजकुमार विजयश्रवा महोत्सव स्थल पर पधार कर अपने अपने आसनों को ग्रहण कर चुके हैं और अब प्रस्तुत है राजकुमार के स्वागत में अद्भुत नृत्य और संगीत। महाराज, आपके आदेश की प्रतीक्षा है।
2: आदेश है, कार्यक्रम आरंभ किया जाए।

0: वाह वाह अरण्यक, नर्तकी की पदगति और अनावृत हाथों से लगता है कि वो अत्यंत ही सुंदर है, परंतु मुखड़े पर घूंघट व्यवधान बन रहा है।
1: चिंता न करो, वो आगे आकर महाराज और राजकुमार को प्रणाम करेगी और फिर अपने चेहरे से घूंघट उठाएगी।

0: अरे हाँ, तुमने सही कहा, अब वो घूंघट उठा रही है। हैं?
1: ये कहीं भुवन मोहिनी तो नहीं?
0: क्या कह रहे हो, तब तो अनर्थ हो जाएगा।
1: अरे ये तो वही है,
2: भुवन मोहिनी।
1: हाँ
0: तो फिर उठो।
1: क्यों?
0: युवराज को यहाँ से दूर ले चले।
1: अरे अब ये प्रकरण हमारे हाथ से निकल चुका है।
2: अच्छा तो फिर देखो कि युवराज की प्रतिक्रिया क्या है।
1: लगता है युवराज ने भुवन मोहिनी को पहचाना ही नहीं।

0: इतनी विडंबना है कि ऐसे समय में जब मेरी प्राणेश्वरी गीत के माध्यम से अपनी असह्य पीड़ा मुझे सुना रही है, मुझे अपने पास बुलाने का प्रयत्न कर रही है, उस समय मैं राजसी बंधनों में जकड़ा हुआ हूँ।
1: कितनी पीड़ा है सखी भुवन मोहिनी के स्वर में। मैं देख रही हूँ कि राजकुमार विजय श्रवा भुवन मोहिनी की पीड़ा से कितने एक रस हो चुके हैं। मानो ये उन्हीं के लिए गाया जा रहा हो।
2: वाह, तुम्हें धन्यवाद है भुवन मोहिनी, तुम अपने संगीत नृत्य से राजकुमार का हृदय जीत रही हो। अवश्य ही मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा, परंतु मैं देख रहा हूँ कि राजकुमार भुवन मोहिनी की ओर वैसे ही खींचे जा रहे हैं जैसे चुंबक की ओर लोहा खींचता है। भय लग रहा है कहीं भुवन मोहिनी की कला पर राजकुमार कुछ अधिक ही मोहित न हो जाए।
0: भुवन मोहिनी, अर्धरात्रि की इस निस्तब्ध वेला में हृदय को चीर देने वाली तुम्हारी ये विहाग रागनी ऐसे लग रही है मानो कोई देवकन्या शाप वशात स्वर्ग भ्रष्ट होकर अपने जीवन की करुण गाथा सुना रही है। अब मैं अधिक समय तक यहाँ नहीं ठहर सकता, नहीं देख सकता अपनी जीवन दाहिनी को इस प्रकार अश्रु निर्झर करते।
2: क्या हुआ युवराज, आप चल दिए?
0: महाराज, चौथा प्रहर होने को है, अब विश्राम चाहता हूँ।
2: नृत्य रोक दिया जाए।
3: महोत्सव संपन्न हुआ, माननीय अतिथि अब विश्राम हेतु जा रहे हैं। सभी लोग शांतिपूर्वक अपने अपने गृह की ओर प्रस्थान करें।
4: कितना सुंदर गायन हुआ भुवन मोहिनी का। राजकुमारी, ये है आपका रथ, इधर आइए।
1: राजकुमार का रथ कहाँ है?
4: ठीक आपके पीछे।
0: अरण्यक?
5: हाँ मित्र,
0: तुम मेरे साथ ही रहना।
5: साथ ही हूँ मित्र, और राजकुमारी जी भी साथ ही हैं।
0: साथ ही हैं?
5: हाँ।
0: कहाँ?
5: अरे वो आगे आगे उन्हीं का रथ जा रहा है।
4: सुनो सारथी, रथ को बहुत तीव्र मत भाग।

0: तुमने ऐसा क्यों कहा सारथ से?
1: ताकि आपका और आपके राजकुमार जी का रथ साथ साथ चले।
2: क्या सोच रहे हैं मित्र? अरे ये पुष्पहार कहां से आ पड़ा मेरे गले में? पुष्पहार? अरे हाँ, संभवतः ये लीला आगे वाले रथ से कराई गई है।
1: राजकुमारी जी, देखिए तो, एक चंद्रदेव ऊपर आकाश में हास कर रहे हैं और एक दूसरे चंद्रदेव पीछे रथ से आपका पीछा कर रहे हैं। तनिक देखिए तो पीछे मुड़कर।
0: अरे उनके गले में तो वही पुष्पमाला है जो मैंने पहन रखी थी। वो वहाँ कैसे पहुँच गई?
1: मैंने फेंकी थी, ठीक उनके गले में जाकर पड़ी। राजकुमार जी, राजकुमारी जी कह रही हैं कि ये उनके पूजा के पुष्प हैं। आप स्वीकार करेंगे ना?
2: अरे मित्र, उत्तर दीजिए ना। मैं क्या बोलूं मित्र, मेरी स्थिति तो दो नावों पर सवार व्यक्ति जैसी है। तात्पर्य, एक ओर मेरी प्रिया भुवन मोहिनी और दूसरी ओर अनुपम सुंदरी राजकुमारी जो मन ही मन मेरा वरण कर चुकी है।
3: अरे मित्र, ये बाद में सोचना, पहले उस दासी के प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। अरे देवी जी, राजकुमारी जी से कहिए कि राजकुमार जी को उनका पुष्प स्वीकार है।
1: धन्यवाद, बहुत सोचकर उत्तर दिया, चलो फिर भी मान लेते हैं। अब कृपा करके उनसे ये भी कह दीजिए कि भूले नहीं, ऊपर चंद्रदेव उनके इस कथन के साक्षी हैं।
3: अरे देवी जी, आप चिंता न करिए, ऊपर चंद्रदेव हैं, नीचे मैं भी हूँ।
2: क्या कह रहे हो मित्र?
3: अरे मैं तो साक्षी की बात कर रहा था।
0: अनुकूल समय आने दो सखी, फिर स्मरण कराने की आवश्यकता ही न रह जाएगी।
1: अरे अरे, अनाथ हो गया सारथी, रथ रोको।
4: क्या हुआ?
2: अरे मित्र, राजकुमारी का रथ रुक गया और ये लो।
3: अपना भी सारथी अत्यंत निपुण है, दोनों ही रथ रुक गए हैं। अब आप नीचे उतरिए।
0: क्या हुआ सखी, रथ को क्यों रुकवा दिया?
1: आपकी मणिमाला खो गई।
0: क्या? अरे अभी तो मैंने अपने गले से उतार कर तुझे रखने के लिए दिया था, तूने पेटी में क्यों नहीं रखा था? कहीं मार्ग में तो नहीं गिरा दिया?
1: कह नहीं सकती।
0: तो फिर रथ वापस लौटाओ और पीछे जाकर खोज करो।
2: अरण्यक? हाँ, क्या हुआ?
3: आज्ञा दीजिए मित्र, अभी पता लगाता हूँ।
2: चलो मैं भी चलता हूँ।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं,
1: यही देखिए ना, यहीं पे तो यही पे हो सकती है।
3: हम जान सकते हैं कि रथ क्यों रुक गया यहाँ पर?
1: राजकुमारी जी की मणिमाला खो गई है।
3: अरे किससे खो गई?
1: मुझसे।
3: ये तो होना ही था।
1: क्या मतलब?
3: अरे जिस राजकुमारी की सखी आप जैसी हो तो मणिमाला को तो खोना ही था।
1: अरे मुझ पर आरोप लगाने वाले आप कौन हैं?
3: मैं राजकुमार विजय शर्मा जी का बाल सखा हूँ अरण्यक, इसलिए अनुभव से कह रहा हूँ। और देवी जी, आप कौन हैं?
1: मैं भी कम अनुभवी नहीं हूँ।
3: वो तो लग ही रहा है।
1: मैं राजकुमारी जी की सबसे प्रिय सखी हूँ।
3: अच्छा?
1: हाँ।
2: अरण्यक, चलो मणिमाला को खोजने में सहायता करें।
1: आप युवराज, जब आप सहायता करेंगे तो मिल जाने में कोई संदेह ही नहीं है।
2: किधर गिरी होगी?
1: राजकुमार, वो उधर दूर उस तरफ।
3: ओ, राजकुमार जी तो मणिमाला खोजने में लग गए, अब हम दोनों सखा सखी को क्या करना होगा?
1: ढूंढते ढूंढते कहीं दूर से सब देखना होगा।
3: अच्छा, तो फिर आओ।
1: हाय, राजकुमार जी मेरी सखी के समीप जा रहे हैं।
3: दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं।
1: हमारी लाडो लजा रही हैं।
3: और मेरे सखा और पास आ रहे हैं।
1: आगे कुछ मत बोलो।
3: लो, चुप हो गया।
1: ऊपर चंद्रदेव को निहारो।
3: ये लो।
2: आह, चंद्रहासिनी, अद्भुत सौंदर्य है तुम्हारा।
0: ये रूप का देवता जो मेरी सा

0: सामने खड़ा है, न जाने कितनी नारियों का महान आकर्षण बना होगा, न जाने कितनी चंद्रमुखी नारियां इसके प्रेम से निराश होकर या तो इसे अभिशाप दे रही होंगी या दर्द भरी टीस लिए हृदय के टूटने का परिणाम भुगत रही होंगी।
1: चंद्रहासिनी, तुम्हारी ये गुथी हुई केश राशियां जो त्रिविध समीर के झोंके खा खा कर नाच पिलाई हुई नागिन की तरह लोचे खा रही हैं, तुम्हारी हल्की बासंती रेशमी साड़ी सुरभित द्रव्यों के मद को वायुमंडल में बिखेरती हुई मेरी सुप्त रति भावना को जागृत कर रही है।
0: ओह, मैं स्वयं को संभाल नहीं पा रही हूं, परंतु मैं जानती हूं कि पुरुष सौंदर्य मद में आकर अनेक कोमल प्रसून हृदय समर्पित नारियों के सर्वस्व समर्पण को ठुकरा देता है। यदि ऐसे पुरुष की समर्पित अभिलाषाओं पर मैं प्रहार करूं तो
2: आई
1: क्या हुआ?
2: मेरी सखी तो हमारी ओर आ रही है।
1: अच्छा,
2: आओ यही विशाल शिला के पीछे छुप जाएं।
1: अरे रुको, तो मेरे सखा उनसे कुछ कह रहे हैं।
3: इंद्रप्रस्थ नगर की राजपुत्री को धारा नगरी के युवराज का अभिवादन स्वीकार करना होगा। ये तो आमंत्रित अतिथि का सबसे बड़ा अपमान है। राजकुमारी, अभिवादन स्वीकार हो।
0: प्रणाम राजकुमार।
1: हमारी ये अमूल्य एकांत घड़ियां वरदायिनी सिद्ध हो।
0: कुछ कहा आपने?
1: नहीं तो।
0: भाभी सम्राट, हम क्षमा चाहते हैं आपसे।
3: क्यों, किस लिए राजकुमारी? मुझे तो अपराध का ज्ञान ही नहीं, फिर क्षमा कैसी? नहीं बताएंगी? चलिए अपने मणिमाल के विषय में ही बताइए। कब और कहां गिरा था और कैसे?
0: मुझे स्वयं कुछ ज्ञात नहीं है देव। वो तो मेरी सखी थी जिसने खो जाने की चर्चा चलाई।
3: क्या मैं जान सकता हूँ कि उस निर्जीव मणिमाला से क्या अपराध हो गया था कि राजकुमारी ने उसे अपने हृदय से दूर किया?
0: दी, इसमें मेरा नहीं, मेरी सखी का हट था। उसे निकाह था।
3: क्या?
0: जो अपने हृदय स्थल को इन मणियों की माला से सजाएगा वो प्रत्येक नेत्र की प्रिय अतिथि बनेगी और साम्राज्य भी।
1: चंद्रहासिनी,
0: क्या भाभी सम्राट मुझ पर सदैव होकर मुझे एक दो प्रश्न करने का अधिकार देंगी?
1: अवश्य राजकुमारी।
0: मुझे भय है कि मेरा प्रश्न कहीं भाभी सम्राट को ना रुचे और मुझे कोप भाजन बनना पड़े।
1: नहीं नहीं, शंकाओं का समाधान आवश्यक है।
0: तो फिर कहती हूँ, मुझे संदेह है कि आज की राजसभा में भाभी सम्राट को मनोरंजन के स्थान पर मनोवेदना प्राप्त हुई है।
1: वो कैसे राजकुमारी?
0: स्वयं अपने नेत्रों से देखा कि कैसे भुवन मोहिनी संगीत लहरियों में अतीत के वेदनापूर्ण संस्मरणों को भावात्मक ढंग से व्यक्त कर रही थी और कैसे उस पर आपकी भावभंगिमाएं मानो किसी प्रच्छन्न प्रेम कथा को प्रकट कर रही थी। क्या मैं जान सकती हूँ कि वो कौन सी भाग्यशालिनी रमणी है जिसने भारत के भाभी सम्राट के हृदय पर वियोग, टीस और जलन के बीज बोए हैं? यदि मेरे प्रश्न ने भाभी सम्राट को विचलित कर दिया हो तो मैं क्षमा याचना करते हुए अपना प्रश्न लौटा लेती हूँ।
1: नहीं राजकुमारी, तुम्हारा प्रश्न उचित है। प्रत्येक नर नारी के जीवन में एक ऐसा क्षण अवश्य उपस्थित होता है जब वो अपना सर्वस्व एक दूसरे के लिए समर्पित करते हैं, किंतु राजकुमारी, प्रेम की गोपनीयता में जो शांति और संतोष है वो उसके प्रकाशन में नहीं। प्रकाशन करने में तो प्रेम तुच्छ और स्वार्थपूर्ण हो जाता है। इस प्रथम परिचय में ही अपने जीवन के गोपनीय तथ्यों को कैसे प्रकट करूं

0: राजकुमारी, आज की रात कितनी रम्य और परस्पर परिचय की मधुर भावना से कितनी सलोनी प्रतीत हो रही है। गिनती किए थोड़े से क्षण मेरे जीवन में अमूल्य संस्मरणों के प्रतीक बनेंगे, जिन्हें भुलाया ना जा सकेगा।
1: यही तो मैं भी सोचती हूँ, किंतु
0: किंतु क्या?
1: यही कि पुरुष मधु हृदय न जाने कितने बार ऐसे मधुर मिलनों को भूलते हुए पाए गए हैं।
0: ये तो अपवाद मात्र है राजकुमारी, कोई निश्चित सिद्धांत नहीं। ज्ञात होता है कि राजकुमारी का वो मूल्यवान हृदय हार सचमुच खो गया है, क्योंकि आपकी सखी और मेरे सखा दोनों ही उसे ढूंढते हुए न जाने कहां चले गए।
1: हाँ भाभी सम्राट, वो हृदय हार मेरे लिए सचमुच में अमूल्य है, और कोई भी अमूल्य वस्तु एक बार खो जाने पर पुनः प्राप्त नहीं होती।
0: चंद्रहासिनी, ये मेरा हृदय हार तुम ग्रहण करो।
1: ये क्या, आपने अपनी मणिजड़ित माला मुझे पहना दी? इसके बदले क्या मैं कुछ दे सकती हूँ? अपना हाथ इधर देने की कृपा करेंगे क्या?
0: क्यों,
1: ये मेरी ओर से प्रेमोपहार
0: अंगूठी।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्योपुर जिले स्थित कूनो नेशनल पार्क में सफारी कर चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। राष्ट्रपति आज अपना 5 दिवसीय प्रदेश दौरा समाप्त कर श्योपुर से ग्वालियर होते हुए नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि योग विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ ही उन्हें आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहा है। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने संस्कृत श्लोक साझा करते हुए कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गन आज प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ मुर्गन शाम को भोपाल कलेक्टर के साथ बैठक करेंगे। डॉ मुर्गन कल देवास जिले के दौरे के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एक पोस्ट में कहा है कि गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के अटूट विश्वास से प्रदेश सशक्त और आत्मनिर्भर बन रहा है। हमारी सरकार अग्रणी मध्य प्रदेश की भावना के साथ हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का 56वां स्थापना दिवस समारोह आज भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। समारोह में अकादमी द्वारा प्रकाशित प्रगति पथ ब्रोशर और द्विमासिक पत्रिका रचना के विमोचन के साथ ही शिक्षाविदों को सम्मानित भी किया जाएगा। और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक जबलपुर, रीवा और सागर संभाग के कुछ जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। प्री मानसून के चलते आज प्रदेश के 21 से अधिक जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 1 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है स्वास्थ्य दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान है।

भुवन मोहिनी। इसकी चौथी कड़ी का प्रसारण अभी आपने सुना संग्रहालय से के अंतर्गत। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 12:58 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।

श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनुराधा पेंट से। श्रोताओं, आजकल डिजिटल युग है, तो स्वास्थ्य सेवा भी डिजिटल क्यों ना हो। हम सभी को जरूरत पड़ने पर डिजिटल हेल्थ सर्विस का लाभ उठाना चाहिए। ये एक ऐसी सेवा है जिसमें इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य तकनीकी उपकरणों की मदद से घर बैठे या आसानी से स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। टेलीमेडिसिन और टेलीहेल्थ के माध्यम से घर बैठे वीडियो कॉल या फोन के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में बात कर सकते हैं या सलाह ले सकते हैं, और मोबाइल एप्स के इस्तेमाल से डॉक्टर के पर्चे को अपलोड कर घर बैठे दवाइयां भी मंगवा सकते हैं। वहीं स्मार्टफोन एप्स, स्मार्ट वॉच और फिटनेस ट्रैकर हमारे रोजाना चले गए कदमों, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और हमारी नींद का पूरा रिकॉर्ड हमें देती है, जिसके जरिए हम वक्त रहते समझ सकते हैं कि हमारी सेहत का मीटर ठीक चल रहा है या नहीं। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल स्वास्थ्य सुविधा भी हम सभी के लिए उपलब्ध है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ABHA, या इसे आभा नंबर भी कहते हैं। जिस तरह हम बैंक लॉकर में अपने कीमती सामान को रखते हैं, उसी तरह आपके स्वास्थ्य से संबंधी सभी रिपोर्ट्स, डॉक्टर के पर्चे डिजिटल हेल्थ लॉकर में रहते हैं, यानी कि पूरा लेखा जोखा कंप्यूटर पर सुरक्षित रहता है। तो आपको अस्पतालों के पर्चों को लेकर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, बस आपको 14 अंकीय पहचान की जरूरत है, जिसे देश भर में किसी भी अस्पताल में बताने पर आपको आपके स्वास्थ्य की पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। आप ये खाता आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन वेबसाइट पर जाकर अपने आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग कर बना सकते हैं, या फिर मोबाइल ऐप पर आभा डाउनलोड करके भी अकाउंट बनाया जा सकता है। ये खाता न सिर्फ स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखता है, बल्कि कागज पत्र

0: श्रोताओं, बारिश की दस्तक हो चुकी है और ऐसे में कई बार बच्चों को बड़ी दिक्कत होने लगती है। खास तौर पे देखा जाता है कि कभी सर्दी, जुखाम, फिर कभी कह रहे हैं कि पेट दुख रहा है। तो इन सब मौसमी समस्याओं का समाधान हम कैसे करें, इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर पंकज जायसवाल जी। आप होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। आज हम इनसे बात करेंगे बाल्यावस्था की सामान्य समस्याएं और होम्योपैथिक चिकित्सा। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि होम्यो चिकित्सा पद्धति क्या है और किस तरह से इलाज किया जा सकता है।
1: होम्योपैथी छोटी बीमारियों के लिए नहीं है, ऐसा जो सोचते हैं कि केवल सर्दी, जुखाम या मीठी गोलियां हैं, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े से हमारे मानसिक बीमारियां, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या डाइजेशन की कोई भी समस्या, किसी भी स्किन की समस्या, महिलाओं की समस्या, सभी पर बहुत ही अच्छा जो है इसका योगदान भी है और उपचार भी है।
0: ज्यादातर अभिभावक बच्चों को कोई समस्या होते ही अन्य किसी पद्धति में चले जाते हैं, तो क्या होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बच्चों के लिए सुरक्षित है?
1: बिल्कुल सुरक्षित है। किसी भी तरीके से, किसी भी अवस्था में होम्योपैथी का उपयोग किया जा सकता है। बच्चों को लेकर के गार्जियन, उनके प्रति एक प्रेम रहता है, अपने आप को ये मान लेता है कि नहीं, मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। तो हम इस बात में कहेंगे कि होम्योपैथी का

0: उपयोग है जो दवाइयों का जो चुनाव किया जाता है, जो आपके लक्षण के आधार पर उसका चुनाव होता है। सर्दी, खांसी, निमोनिया, जैसे बारिश के समय में क्या लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, सर्दी जुखाम, गले में प्रॉब्लम आ जाता है, या उसको बहुत तेजी से फीवर आ जाता है, निमोनिया की दिक्कत हो जाती है, तो बच्चों को उसको होम्योपैथी प्रथम दृष्टया में लोगों को दिखाना चाहिए। अगर इमरजेंसी कोई बचती है तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। हम वहां पर किसी भी विषय में ये बात नहीं कहता हूं कि हमें उनका सहारा नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमारा ये सोचना है कि ज्यादा भारी दवाइयों को एक बार में बच्चों को देने से पहले होम्योपैथी का जरूर सहारा लेना चाहिए।
1: सामान्य तौर पर बच्चों में किस तरह की समस्याएं हैं जो देखने में आती हैं, सुनने में आती हैं, और होम्योपैथी इसमें कितनी कारगर रहती है?
0: सामान्य तरह से अभी जैसे बारिश का मौसम आ रहा है, हर मौसमी बीमारियां होती हैं, बारिश का मौसम में संक्रमण ज्यादा होता है, क्योंकि उस समय बारिश के समय में बहुत सारे हमारे जीवाणु हैं, फंगस हैं, ये हमारे गंदगी की वजह से घरों में और किसी भी तरीके से काफी नमी की वजह से हमारे शरीर में उनका उत्पन्न हो जाता है। तो अगर हम जो है रोकथाम चाहते हैं तो सबसे पहले सुरक्षा हमारी जरूरी है। जरूरी किस तरीके से है कि बारिश का मौसम है, बचें, शाम के समय भीगते हुए आए और पंखे के नीचे सो गए, सर्दी हो जाता है, सर अगर ठंडा हुआ, सर अगर हमारा किसी तरीके से नमी बनी रही, तो वो हमें गले को वायरल को लेकर के बहुत तेजी से संक्रमण फैल जाता है। तो बच्चों को बारिश में भीगना हम मना नहीं करते, भीगना चाहिए, लेकिन बच्चों के शरीर से जो पानी रहता है उसको तावल से अच्छे से साफ करके, सोते समय हल्का सा कुनकुना सरसों का तेल है उसको बॉडी के हर पार्ट में उसको थोड़ा सा मालिश करना चाहिए, लगाना चाहिए, हल्के कपड़े पहनना चाहिए। तो रोकथाम में कुछ होम्योपैथी की जैसे दवाइयां शुरुआती दौर में गले में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी जुकाम की आशंका लग रही है, या बुखार आने का मुझे लग रहा है, शरीर में टूटन आ रहा है, तो वहां पर हमारे यहाँ दो दवाइयों का बहुत अच्छा जो है उसका परिणाम है, जैसे आर्सेनिक है और मर्कसॉल, इनको दवाइयों को जरूर दे देना चाहिए, एक ही डोज में या दो डोज में ही उसका असर आ जाता है।
1: जी, जैसे आपने बताया कि बरसात में बच्चों में संक्रमण का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो बच्चों में हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं?
0: बिल्कुल, मैंने अभी जो दवा का जिक्र किया, मैंने आर्सेनिक एक अपने में इतनी बड़ी दवा है कि अगर हमने उसको सुबह खाली पेट 3 दिन दवा दे दिया तो बारिश के मौसम में जितने फंगल इन्फेक्शन होते हैं, खाने में कुछ दिक्कत आ जाती है तो फूड पॉइजनिंग की दिक्कत आ जाती है, बारिश में भीग गए तो लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, या किसी भी तरीके से कुछ भी अगर उसमें बात आती है, तो आर्सेनिक अपने में पूरी दवाई है।
1: जी।
0: 3 डोज उसको सुबह खाली पेट 3 दिन ले लें, लेकिन अगर उस प्रतिरोधक दवाइयों के बाद किसी भी तरीके से अगर वो भारी समस्या में या उसका जो रोग है वो बढ़ रहा है तो जरूर डॉक्टर से परामर्श ले।
1: तो ये कितने समय तक लेना चाहिए और कितने समय तक लेने के बाद इसे बंद कर देना चाहिए?
0: आर्सेनिक दवाइयां सिंगल डोज है 200 पावर में 3 दिन लेना चाहिए, खाली पेट सुबह 3 दिन, 2 से 3 महीने के बाद फिर से रिपीट कर ले, घर के सभी सदस्य ले सकते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो।
1: आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि और किस तरह के उपाय हो सकते हैं जिनसे बच्चों को बार बार बीमार पड़ने से बचाया जा सके।
0: ये बात करूंगा मैं मोबाइल के बारे में, बच्चे की गर्दन टेढ़ी हो जाती है, चक्कर आ रहा है, कोई भी टेस्ट कराने के बाद कुछ भी नहीं आ रहा है। अभिभावक से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को मोबाइल में क्या चीजें उनके लिए जरूरी है उन पे निगरानी रखें और कितना समय दें। सुबह का नाश्ता सबसे पहली ड्यूटी है कि सुबह उठाना, उसको योगा, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, जैसा हम सिखाएंगे बच्चा वैसे बनेगा।
1: होम्योपैथिक दवाइयों के साथ में क्या खाने पीने का भी कोई परहेज रहता है?
0: बीमारियां किस तरीके की है, जैसे अब डाइजेशन की कोई बीमारियां है, दस्त का पेशेंट आ गया तो हम दस्त में थोड़ी कहेंगे कि कुछ चीज खाना, तो दस्त के हिसाब से जो मूंग की खिचड़ी खाने को डॉक्टर बोलता है उसके पीछे रीजन होता है, मूंग और चावल जो पका करके जब बनाते हैं तो उसमें एक श्लेष्म बनता है जिससे हमारे आंतों को पचाने में सुपाच्य होता है और वो दस्त को रोकता भी है। तो जो बीमारियां जिस तरीके की रहती हैं उसमें रोकथाम खाने का जरूर रहता है, हर बीमारियों में नहीं रहता है। होम्योपैथी में ये बात जरूर करते हैं कि भाई होम्योपैथी में तो ये नहीं खाना, कच्चा लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, ये समाज में एक होम्योपैथी के प्रति एक धारणा है कि यार बड़ा वहां पर परहेज बताया जाता है। होम्योपैथी का जो सिद्धांत है ये अपने में इतनी मजबूत है।

0: है कि इसमें वो छोटे छोटे खानों की चीजों से वो उसकी बीमारियों की जो क्षमता है ठीक करने की वो कमजोर नहीं पड़ती है। बशर्ते हमें ये समझना जरूर होता है कि कौन सी बीमारियों को किसमें हमें रोकथाम करना है।
1: अब हम बात करते हैं जो बच्चे स्कूल जाते हैं, बाहर रहते हैं, काफी समय तक खेलते कूदते हैं, तो उन बच्चों के संक्रमित होने का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है, खास तौर पर बारिश के मौसम में। तो उसे बचाने के लिए होम्योपैथी में क्या कोई कारगर उपाय है?
0: सबसे पहले तो हम जितनी बीमारियां हैं अपनी सुरक्षा खुद से करें। जैसे बारिश के मौसम में संक्रमण ज्यादा रहता है, उसका कारण रहता है कि नमी। ह्यूमिडिटी बॉडी में मौसम में होने के नाते कहीं भी हर जगहों पर नमी की वजह से फंगस का बढ़ने का जो सिरा होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए कभी भी कुछ काम करें तो अपना साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि साफ जितना रखेंगे संक्रमण उतना कम होगा। बड़े बच्चे हैं, अपनी बातों को डॉक्टर के सामने बता सकते, छुपाने की जरूरत नहीं है। जैसे बड़े बच्चे किसी कुछ बड़े बीमारी में कुछ रहते हैं तो छुपा ले जाते हैं, और वो छुपाने के साथ में बताते सोचते हैं कि गार्जियन को बताऊंगा तो वो डांटेंगे मुझे। तो जो बच्चे हैं इसलिए गार्जियन से बताते नहीं, तो बताना जरूर चाहिए, नहीं वो गंभीर समस्याओं का संक्रमण बारिश के समय में होता है। वायरल इन्फेक्शन, इसमें सबसे बड़ी बात जो हमने देखा है एक निमोनिया, सर्दी जुकाम हुआ, खांसी आ रही है, धीरे से भीग गया, बारिश में आए, सो गए, पंखे की हवा लगा, लंग्स पूरी तरीके से कंजेस्ट हो गए। हम यहाँ पर सचेत करूंगा कि अगर ऐसी दिक्कत है तो डॉक्टर से परामर्श लें। अब रही बात होम्योपैथी की, बच्चों में अगर कुछ इसी तरीके से है तो हम सब नर्सिंग मेडिसिन बोलते हैं, सेंडोगस नाइग्रा 30 पोटेंसी में 3 बार। बड़े बच्चे हैं, कभी भी सर्दी जुखाम बुखार खांसी के साथ में अगर किसी भी समस्या का रोग अगर उत्पन्न हो रहा है तो फेरोफॉस 6x, इसको जरूर याद कर लें। मैं इस दवा के बारे में इतनी कॉन्फिडेंस में और अपने 15 सालों का अनुभव में आपसे शेयर करूंगा कि फेरोफॉस 6x अगर मैंने बच्चों को दे दिया, चाहे छोटे बच्चों को दे दिया चाहे बड़े बच्चों, बिल्कुल भी आप इस दवाई को दे दीजिए, पूरे कफ को जो कंजेस्ट है पूरे धीरे धीरे बाहर कर देगा, आपकी खाने की क्षमता, आपकी जो बुखार है, जो कंजेशन है, धीरे धीरे वो अपने आप में नॉर्मल कर देगा।
1: हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे बहुत छोटे जो नवजात बच्चे रहते हैं, तो जब हम उन्हें दवाई दी जाती है तो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए?
0: देखिए, नवजात बच्चे, हम होम्योपैथी में 10 दिन का बच्चा हुआ और दवाई दीजिए, अब उसमें दवाइयाँ देना उचित है? बिल्कुल दिया जाता है, तो उसकी माँ साथ में रहे, तो क्योंकि वो माँ ही सब कुछ सिम्टम उसका बता सकता है कि मेरा बच्चा किस तरीके का हरकत करता है
1: जी,
0: दस्त कितनी बार किया, दस्त का कलर क्या था, खांसी किया तो किस तरीके से उसके सिम्टम आए कि सांस फूल रही थी, शरीर नीला पड़ गया, डिस्निया की कंडीशन हो जाती, निमोनिया आ गया, हमारा डॉक्टर का अब्जर मैंने स्टेथोस्कोप लगाया, उसको समझा, देखा, सब कुछ समझ के उसको दवाइयां दिया, क्योंकि बच्चा बता नहीं सकता अपने मुंह से। छोटे बच्चों के लिए देर नहीं करना चाहिए, दस्त कई बार हो रहे हैं, एक बार हुआ तो ठीक है, बुखार तेज आ गया, या कभी कभी बुखार इंसेफ्लाइटिस एक कंडीशन होती है कि मस्तिष्क ज्वर, ये कभी अगर बच्चों को छोटे समय पर अगर वो बीमारियां हुआ, बुखार आया, अगर सही समय पर उसकी दवाइयां नहीं मिली तो बच्चों को देखते देखते अचानक उसको इतनी गंभीर रूप में ताप आ जाएगा उसके शरीर में कि वो मुंह से बड़बड़ाने लगता है, छटपटाने लगता है, और गार्जियन उसमें बेचैन हो जाता है कि मेरे बेटे को क्या हो। तो कुछ समस्याएं होती हैं, उसको अभिभावक को जब डॉक्टर के पास जाए, जो लक्षण आपने जो समझा है अपनी भाषा में डॉक्टर को, अच्छी भाषा में आप बताइए, डॉक्टर खुद समझेगा और आपका वो लक्षण बताना कितना गंभीर है और कितना कारगर डॉक्टर के लिए सिद्ध हो सकता है, इस बात को छुपाना नहीं चाहिए।
1: ये बताइएगा कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति और सामान्य जीवन शैली में अगर हम सुधार करते हैं तो किस तरह से हमें क्या बेहतर परिणाम उसके मिल सकते हैं?
0: देखिए, हम तो होम्योपैथी के डॉक्टर हूँ, तो होम्योपैथी की रही बात, हमारे लिए हर बीमारियां अपने आप में बड़ी ही सैद्धांतिक और तथ्यात्मक रूप से लक्षणों के आधार पर इसका उपचार किया जाता है, और इसको बहुत ही गहन चिकित्सा के रूप में गहन करके इसकी दवाइयों का सिलेक्शन होता है। अपने श्रोताओं से जरूर कहूंगा कि होम्योपैथी दवाइयों का एक बार जरूर चुनाव करें, क्योंकि ये किसी भी रोग को दबाती नहीं है, ये उनके लक्षणों के आधार पर, उसके जो सिम्टम आप बताते हैं उनके आधार पर चिकित्सक जो है चिकित्सा करता है। जैसे आप कहेंगे टीबी की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी, बीमारियों के नाम से ये होम्योपैथी नहीं जानी चाहिए, लक्षणों के आधार पर जानी जाती है।
1: जी, हमसे बात करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आइए अब सुनते हैं एक प्यारा सा

नाम है हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी का। आज हम इसमें बात करेंगे कॉन्टेक्ट लेस हेल्थ टेक्नोलॉजी की। श्रोताओं, कॉन्टेक्ट लेस हेल्थ टेक्नोलॉजी को सरल भाषा में समझना चाहें तो इसे संपर्क रहित स्वास्थ्य तकनीक कह सकते हैं। इसमें शरीर को छुए बिना या किसी तार या उपकरण को लगाए बिना भी दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन को मापा जा सकता है। इसके लिए मरीज के गद्दे के नीचे पतले सेंसर लगाए जाते हैं जो शरीर की बारीक हलचल पर भी नजर रखते हैं। इसके अलावा फेशियल स्कैनिंग कैमरा आपके चेहरे के रंग या त्वचा में होने वाले बदलाव से तनाव के स्तर या दिल की धड़कन को भी माप सकता है। ये टचलेस तकनीक जल्द ही सब जगह उपलब्ध होगी और आशा है इसमें सभी लोग आनंदित होंगे।

is the message, eh?

0: बदलते मौसम में सुरक्षित रहने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कच्ची चीजें खमकाएं, पत्ता गोभी और सलाद जैसी कच्ची सब्जियों को खाने से बचें और अच्छे से उबाल कर या पका कर खाएं, और साथ ही पानी भी बहुत सारा पीते रहिए। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान आपको स्वस्थ रखेगा। तो बस अब अनुराधा पेंडसे को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।

मध्य प्रदेश से। दोपहर के 1:30 हुए हैं, ये समय है लोक संगीत के कार्यक्रम का और इस कार्यक्रम में आप सुनने जा रहे हैं अनसुईया बोरलिया से कुछ मालवी गीत। कार्यक्रम का आरंभ इस लोक भजन से।

0: समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:30 हुए हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

आनंद बख्शी के संगीत निर्देशन में इस गीत को शब्द दिए थे आनंद, माफ कीजिएगा, आनंद बख्शी ने शब्द दिए थे और धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गाया था किशोर कुमार ने और फिल्म का नाम महबूब की मेहंदी। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं हमारे ये सभी दोस्त पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर आसनावत से, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। राजावत कॉम्प्लेक्स, नई सड़क, एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, मधु राजावत, राशि रक्षित एवं उनका पूरा परिवार इसी गीत को सुनना चाहता था। करूला मुरादाबाद से अगली चिट्ठी आई है अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान, नावेद खान की, और इसी गीत को सुनना चाहते थे सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी।

अमित त्रिवेदी का गाया हुआ गीत उन्हीं के संगीत निर्देशन में बोल अमिताभ भट्टाचार्य की फिल्म का नाम ब्लैकमेल। ख्वाहिशमंद हमारे दोस्त उनके नाम इस गीत के बाद।

आपकी फरमाइश के इस गीत को सुनवाने के लिए हमारे सभी दोस्तों ने चिट्ठी लिखी थी। ये हैं दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिगारपुर से सालिक पुजारी, अमरावती महाराष्ट्र सरोज चौक से ये खत आया है कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुज्तबा खान और राऊफ भाई शहीद भाई, गांधीबाग आकोला से रमेश काटनकर और वैशाली काटनकर ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। अब हम सुनवा रहे हैं हमारे इन सभी दोस्तों की फरमाइश, जिनके नाम हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजौरिया। इन्होंने ये चिट्ठी लिख भेजी है पटेल नगर मालोट पंजाब से, कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। ये गीत है तेजाब फिल्म से लिया गया। अमित कुमार और साथियों ने इसे अपनी आवाजें दी है। धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, बोल जावेद अख्तर के।

ये गीत आप सुन रहे हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों का गाया हुआ। अप्पू राजा फिल्म से इस गीत को हमने लिया है। प्रेम धवन ने इस गीत को शब्द दिए हैं और धुन है इलैयाराजा की। इस गीत को सुनवाने के लिए चिट्ठी लिख भेजी थी हमारे इन सभी दोस्तों ने, संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, घंटा घर चौक, खंडवा से। प्रभाकर जोंघले, आरती जोंघले ने ये चिट्ठी लिख भेजी थी गौतम नगर जिला नांदेड़ से। और कार्यक्रम के आखिरी गीत के लिए फरमाइश करता है हमारे ये सभी दोस्त, सपना संगीता रोड इंदौर से, लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, सुनीता, संगीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। ये चिट्ठी भी इंदौर से ही आई है, गुमाश्ता नगर स्कीम नंबर 71 से। अनिल कवचाले, नेहा फणीस, सीमा, सबीहा, पूजा, सुषमा और स्मिता की। इन्होंने सुनना चाहा है श्रेया घोषाल को। गीतकार है कुमार फरहान सईद ने धुन तैयार की है। आवाज है श्रेया घोषाल और फरहान सईद की। फिल्म का नाम है हाफ गर्लफ्रेंड।

0: हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म के इसी नगमे के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:58 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की और कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी अहम भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपार सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। श्री स्टारमर का कहना है कि वे परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन आज प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉ मुरुगन शाम को भोपाल कलेक्टर के साथ बैठक करेंगे। डॉ मुरुगन कल देवास जिले के दौरे के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का 56वां स्थापना दिवस समारोह आज भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। मानसून की रफ्तार धीमी होने और प्री मानसून गतिविधियों में कमी के कारण तापमान बढ़ गया है। राजधानी भोपाल में दोपहर में बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी से उमस बढ़ गई है। और फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा संपन्न हो उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें हमारी सांध्यकालीन सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। युवा दोस्तों के कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण किया जाएगा शाम 5:02 पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र का योगदान होगा। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 6:00। कार्यक्रम आजकल कल का प्रसारण किया जाएगा शाम 6:40 पर। प्रादेशिक समाचार दर्शन आप सुन सकते हैं 6:45 पर। ग्राम सभा का प्रसारण समय रहेगा 7:21 और सुर्खियों में इसे आप सुनेंगे रात 8:00। आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, प्रसारण समय रहेगा रात्रि 9:30 और आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी कार्यक्रम आपकी फरमाइश में रात 10:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनेंगे 10:30 संगीत गोस्वामी से राग यमन में ख्याल गायन। ये थी संक्षिप्त सी जानकारी उन कार्यक्रमों की जिन्हें आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी

आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में सांझकालीन सभा में सुन सकते हैं। 3:02 होने को है। अब मीडियम वेव पर हमारी ये सभा संपन्न होती है। मीडियम वेव पर आप हमारी सभा का प्रसारण शाम 5 बजे से सुन सकते हैं। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। नमस्कार।

रेडियन वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में सुनते हैं युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी।

0: साथियों, आज का युवाणी कार्यक्रम लेकर मैं हूं आपके साथ राधिका वाजपेयी, और मेरे साथ हैं
1: पीयूष चतुर्वेदी।
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा
1: नमस्कार।
0: पीयूष, क्या बात है, आज दिन कैसा रहा तुम्हारा? काफी थके हुए लग रहे हो।
1: अरे राधिका, क्या है, मेरा दिन काफी व्यस्त रहा। क्या है ना कि अभी शादियों का तो सीजन चल रहा है, तुम्हें पता है, जैसे तो काफी व्यस्तता बढ़ गई है।
0: अच्छा, तो आज क्या क्या किया तुमने?
1: सबसे पहले सुबह उठते ही हर रोज की तरह पानी पिया, फिर दूध का पैकेट लिया, क्या है उसके बाद नाश्ता किया, उसके बाद बाजार गया, वहां से कुछ सामान खरीदा, दोपहर में ऑनलाइन खाना भी मंगवाया और शाम को जूस पीकर यहाँ अपने श्रोताओं से मिलने चला आया।
0: वाह, सुनने में तो दिन बिल्कुल सामान्य लग रहा है, लेकिन क्या तुमने ध्यान दिया कि तुम्हारी बताई हुई लगभग हर चीज में एक चीज बार बार शामिल हुई है?
1: अच्छा, सच में? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता।
0: जरा सोचो, पानी की बोतल, दूध का पैकेट, बाजार से लाया गया सामान, खाने की पैकिंग और जूस का गिलास या जो पीने वाली स्ट्रॉ है, इन सब में क्या समानता थी?
1: अरे हाँ, इनमें से तो ज्यादातर चीजें प्लास्टिक से बनी हुई थी।
0: बिल्कुल सही, और यही बात हमें सोचने

0: पर मजबूर करती है कि प्लास्टिक हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा बन चुका है।
1: लेकिन राधिका, प्लास्टिक तो बहुत सुविधाजनक भी होता है, हल्का होता है, सस्ता होता है और आसानी से भी तो मिल जाता है।
0: बिल्कुल पीयूष, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। लेकिन यही सुविधा आज एक बड़ी समस्या भी बनती जा रही है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्लास्टिक पूरी तरह से नष्ट होने में सैकड़ों साल लगा सकते हैं। इस दौरान ये मिट्टी, नदियों और समुद्रों को प्रदूषित कर सकती है।
1: अरे, और मैंने तो कई बार समाचारों में भी देखा है कि जानवर प्लास्टिक खा लेते हैं, जिससे उनकी जान तक चली जाती है।
0: बिल्कुल पीयूष, इतना ही नहीं, प्लास्टिक छोटे छोटे कणों में बदल कर हमारे भोजन और पानी तक पहुंच रही है। इन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए चिंता का विषय है।
1: तो फिर क्या हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए?
0: नहीं पीयूष, शायद पूरी तरह बंद करना आसान नहीं है, लेकिन इसे कम करना जरूर संभव है। कपड़े या जूट के बैग का उपयोग, बार बार इस्तेमाल होने वाली पानी की बोतलें और प्लास्टिक कचरे का सही निपटान, ये छोटे छोटे से कदम बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
1: मतलब बदलाव की शुरुआत सरकार से पहले और अन्य लोगों से पहले हमें ही करनी होगी।
0: बिल्कुल, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा सिर्फ किसी एक व्यक्ति या संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, हम सभी की जिम्मेदारी है।
1: तो दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी है कि जहां भी संभव हो प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करेंगे और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपना योगदान देंगे।
0: बिल्कुल, क्योंकि सुविधा कुछ समय की हो सकती है साथियों, लेकिन प्रकृति की सुरक्षा आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ी है। तो साथियों, ये तो थी एक महत्वपूर्ण विषय से जुड़ी चर्चा, प्लास्टिक प्रदूषण। इसके बाद लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
2: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
3: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
0: साथियों, अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आपको ले चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे किक फिल्म का ये गीत, जिसमें आवाज थी मोहम्मद इरफान की।
1: गीत था मयूरपुरी का, जिसे संगीत से सजाया था हिमेश रेशमिया ने।
0: राधिका, आज एक बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया।
1: क्या पीयूष?
0: ये कि आज जब बाजार से घर वापस लौट रहा था तो मैंने कुछ युवाओं को देखा जो नशे की लत में पड़ चुके हैं। उन्हें देखकर लगा कि एक गलत आदत कैसे किसी व्यक्ति का भविष्य बदल सकती है।
1: पीयूष, तुमने बिल्कुल सही बात करी। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज से जुड़ा हुआ है। विषय है नशा मुक्त भारत अभियान।
0: साथियों, नशा मुक्त भारत अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है।
1: साथियों, उसका उद्देश्य युवाओं और समाज को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशे की समस्या को कम करना है।
0: साथियों, नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसके परिवार, शिक्षा, करियर और सामाजिक जीवन पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालता है।
1: शुरुआत अक्सर मजाक या शौक से होती है, लेकिन धीरे धीरे वही आदत लत में बदल जाती है।
0: बिल्कुल सही। और एक बार लत लग जाए तो उससे बाहर निकलना आसान नहीं होता है।
1: बिल्कुल। नशे के कारण मानसिक तनाव, आर्थिक समस्याएं और अपराध और सड़क दुर्घटनाएं तक बढ़ सकती हैं।
0: बिल्कुल। और इसीलिए नशा मुक्त भारत अभियान के तहत स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ताकि नशे से दूर रहें और दूसरों को भी प्रेरित करें।
1: बिल्कुल। मतलब इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ नशा छुड़वाना नहीं बल्कि लोगों को सही दिशा दिखाना भी है।
0: बिल्कुल सही राधिका। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं की ही है, क्योंकि युवा ही समाज की सबसे बड़ी ताकत है।
1: बिल्कुल पीयूष, अगर युवा जागरूक

0: होंगे तो वे न केवल खुद नशे से दूर रहेंगे बल्कि अपने दोस्तों और परिवारों को भी इसके प्रति जागरूक कर सकेंगे।
1: मुझे लगता है कि असली ताकत किसी गलत आदत को अपनाने में नहीं है बल्कि उससे दूर रहने में है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने पीयूष। साथियों, नशा कुछ समय के लिए खुशी का भ्रम दे सकता है। आपको लग सकता है कि आप बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो जीवन से सपने, अवसर और आत्मविश्वास छीन लेता है।
1: बिल्कुल सही कहा राधिका। और याद रखिए, नशे को ना कहना कमजोरी नहीं है बल्कि सबसे बड़ी समझदारी है।
0: बिल्कुल साथियों, संकल्प लें कि स्वस्थ, जागरूक और नशा मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे।
1: तो साथियों, ये तो हमने आपसे बात की नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में, और अब आपको सुनवाते हैं कहानी हृदय का दीपक, जिसमें कहानीकार होंगे प्रांशु प्रजापति।
2: हिमालय की शांत वादियों में एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग प्रकृति और देवताओं की पूजा करते थे। सुबह की शुरुआत घंटियों और भजन से शुरू होती थी। उसका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से बीत रहा था। बचपन में ही उसके माता पिता चल बसे थे और वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी और हर दिन मंदिर में जाकर पूजा करती और कहती कि हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दे दो कि मैं दूसरों का दुख बांट सकूं। एक दिन बहुत ही भयंकर वर्षा हुई, नदी उफान पर थी। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में बंद थे। तभी उस लड़की ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति मंदिर की सीढ़ियों में बैठा बारिश में भींग रहा है और ठंड से कांप रहा है। उस लड़की ने गांव के कुछ लोगों को चिल्लाया, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। तो वह लड़की खुद ही जाकर मंदिर गई और उस व्यक्ति को अपने साथ अपने घर ले आई। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? तो वह लड़की उस बूढ़े व्यक्ति को खाना देती है और देर रात तक बारिश होती है तो वह लड़की उस बूढ़े व्यक्ति को अपने ही घर में सोने को कहती है। आधी रात बीत चुकी थी और उस बूढ़े व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आती है और उसे बहुत तेज ठंड भी लग रही थी। वह लड़की अपने घर के सारे कपड़े उस बूढ़े व्यक्ति को डाल देती है और फिर पड़ोस में ही डॉक्टर के पास जाती है। उनका दरवाजा खटखटाती है, लेकिन वह डॉक्टर दरवाजा नहीं खोलते हैं और निराश होकर वह वापस घर आती है। आती है तो देखती है कि वह बूढ़े व्यक्ति सो गए और वह भी अपने बिस्तर में जाकर सो जाती है। और जब सुबह होती है तो देखती है कि वह बूढ़े व्यक्ति अपने बिस्तर में नहीं थे। वह आसपास देखती है लेकिन उनका कोई पता नहीं था। तभी वह बिस्तर में एक चिट्ठी देखती है और उस चिट्ठी में पढ़ती है। उस चिट्ठी में लिखा था कि तुम मुझे खोजने की प्रयास मत करना, मैं हिमालय में जा रहा हूँ कुछ औषधियाँ लेने, क्योंकि गाँव में एक बहुत ही भयंकर महामारी आने वाली है। और इतना पढ़कर वह लड़की बहुत ही दुखी होती है, सोचती है कि अब क्या होगा। उसमें आगे लिखा था कि यह बात किसी को मत बताना। लेकिन कुछ दिन बीतते हैं, गांव में कोई महामारी नहीं आती। वह लड़की सोचती है कि कहीं उन बूढ़े बाबा ने गलत तो नहीं कहा। और धीरे धीरे समय बीतने लगता है और धीरे धीरे उन बाबा की बात भी गलत साबित होने लगती है। लेकिन वही बीमारी धीरे धीरे फैल भी रही थी। गाँव के सभी लोगों की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है। धीरे धीरे गांव के लोग भयानक बीमारी से ग्रसित होने लगते हैं। कुछ दिन बाद वो बूढ़े बाबा उसी लड़की के दरवाजे पर आते हैं तो वो लड़की तुरंत पूछती है कि बाबा, आप औषधि लाए? तो वह बूढ़ा व्यक्ति निराश होकर कहता है कि नहीं, मुझे वो औषधि नहीं मिली। तो लड़की दुखी पूर्वक कहती है कि बाबा, गांव के सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं। वैद्य जी दवा देते हैं तो एक दो दिन तक वो सही रहते हैं, फिर से बीमार पड़ जाते हैं। तो वह बूढ़े बाबा कहते हैं कि अब तो भगवान ही सहारा है। तो वो लड़की तुरंत मंदिर में जाती है और जैसे ही कहती है कि हे प्रभु, वैसे ही बाहर से आवाज आती है कि बेटा, हिमालय का रास्ता यही है। तो वह लड़की बाहर आती है और उन ऋषियों को प्रणाम करती है और कहती है कि जी, यही हिमालय का रास्ता है। और वो ऋषि जाने ही लगते हैं तो वह लड़की उन ऋषियों से पूछती है कि ऋषिवर, क्या आप किसी अच्छे वैद्य को जानते हैं? तो ऋषि पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ? तो लड़की कहती है कि हमारे गांव में एक बहुत ही भयानक महामारी फैल चुकी है, कोई अच्छे वैद्य मिल जाए तो शायद इस बीमारी का इलाज कर पाए। तो वह ऋषि कहते हैं कि चलो हमें बताओ ये किस प्रकार की बीमारी है। और वो लड़की उन ऋषियों को

तुरंत राजवैद को बुलाया जाता है और राजवैद सैनिकों के साथ कारावास में जाते हैं और जैसे ही सैनिक कारावास का दरवाजा खोलते हैं वैसे ही वो उस लड़की को पहचान जाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ पर कैसे। तब लड़की रोते हुए पूरी कहानी बताती है कि कैसे उसे राजा ने कारावास में डाल दिया और वो वैद तुरंत भागते हुए मंत्री के पास जाते हैं और पूछते हैं कि उस लड़की को कारावास में क्यों डाला, उसका क्या कसूर था। मंत्री वैद को सारी बात बताते हैं कि उस समय राजा जी बहुत गुस्से में थे इसलिए हम भी कुछ बोल ना सके और वो वैद तुरंत राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपने उस लड़की को कारावास में क्यों बंद किया, क्या आप उस लड़की को जानते हैं। वो इतना पूछ ही रहे थे कि इतने में एक सैनिक आता है और राजा को प्रणाम करता है और कहता है कि महाराज वो लड़की जो कारावास में बंद थी उसकी मौत हो गई है। और इतना सुनकर ही वो वैद्य फूट फूट कर रोने लगते हैं और रोते हुए कहते हैं कि ये सब आपके अहंकार की वजह से हुआ है, ना आप अहंकार में आकर उस लड़की को कारावास में डालते और ना उस लड़की की आज मृत्यु होती। और वो राजा बहुत दुखी होते हैं और वो वैद्य से कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तभी राजवैद राजा से कहते हैं कि अब मैं आपके यहाँ राजवैद नहीं रह सकता, मैं इस राज्य को छोड़कर जा रहा हूँ। राजा बहुत विनती करते हैं, उन ऋषि के पैरों में गिरते हैं लेकिन ऋषि कहते हैं कि अब मैंने फैसला कर लिया है और अब मैं जा रहा हूँ, और ऋषि चले भी जाते हैं। और फिर राजा उस लड़की के शरीर को लेकर उसी गाँव में जाते हैं और उस गाँव के लोग बहुत खुश होते हैं कि राजा उनके गाँव में आए हैं, लेकिन उनकी खुशी कुछ ही देर की थी और फिर उन लोगों को उस राजा ने सारी बात बताई और सभी गाँव वाले रोने लगे और राजा को वापस जाने को कहने लगे। राजा सभी से कहते हैं कि मैं आपका गुनहगार हूँ, आप जो सजा देंगे मैं उसे स्वीकार करूँगा, लेकिन गाँव वाले उस राजा को अपने यहाँ से भगा देते हैं। राजा दुखी दुखी अपने राज्य में वापस आते हैं, वहाँ गाँव वाले उस लड़की का अंतिम संस्कार करते हैं और उन पर दुख का समुन्द्र सा उमड़ पड़ा था। सभी गांव वाले एक जगह बैठ कर रोते हैं और कहते हैं कि हमें उन सैनिकों के साथ बेटी को नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। किसी का गुस्से में लिया हुआ फैसला एक किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। साथियों

0: थी एम फातिमा बीवी।
1: तीसरा प्रश्न था, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है?
0: जिसका सही जवाब है चित्तौड़गढ़ किले में।
1: साथियों, चौथा प्रश्न हमने पूछा था, वर्ष 2026 के लिए भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे बनाया गया है?
0: जिसका सही उत्तर है वी अनंत नागेश्वरन।
1: साथियों, पांचवें प्रश्न के रूप में हमने पूछा था, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है?
0: इसका उत्तर है भीतरी छाल से।
1: छठे प्रश्न के रूप में हमने पूछा था, भारत का महापंजीयक किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है?
0: जिसका उत्तर है गृह मंत्रालय।
1: साथियों, हमने सातवें प्रश्न के रूप में पूछा था, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
0: जिसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल।
1: आठवें प्रश्न के रूप में हमने पूछा था, पवन द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है?
0: जिसका उत्तर है बरखान।
1: साथियों, नौवां प्रश्न के रूप में जो हमने प्रश्न किया था वो था, कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है?
0: जिसका उत्तर है रॉबर्ट हुक।
1: साथियों, अंतिम प्रश्न यानी दसवें प्रश्न के रूप में हमने पूछा था, बुंदेलखंड की लोक नाट्य विधा का नाम क्या है?
0: जिसका उत्तर है स्वांग।
1: साथियों, आपके उत्तर हमें पत्रों के रूप में, ढेर सारे पत्र हमें जो प्राप्त हुए हैं, और मुझे खुशी है कि हमें एक से सही, सात सही जवाब वाले एक भी पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं पीयूष, और हमें आठ सही जवाब वाले सिर्फ तीन पत्र प्राप्त हुए हैं। तो आप बताइए कि हमें ये पत्र कहाँ से और किसके द्वारा प्राप्त हुए हैं?
0: हाँ राधिका, तो सबसे पहले ये जो पत्र हमें प्राप्त हुआ है ये है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी, नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल।
1: साथियों, दूसरा पत्र हमें जो प्राप्त हुआ है जिसने आठ सही जवाब है वो है पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर का।
0: ये पत्र है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा, विनय शंकर, नयन और सोमांशु पांडे।
1: साथियों, हमें नौ सही जवाब वाले नौ पत्र प्राप्त हुए हैं, जो कि हमें पहला पत्र प्राप्त हुआ है गांव परसा टोला जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सलोचनी, तुषारणी और खूमेंद्र मसिया का।
0: ये पत्र है खमहरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार।
1: रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।
0: कोयलारी छत्तीसगढ़ से कैलाश चंद्राकार, मुकुंद पूर्णेंद्र, साहिल चंद्राकार।
1: ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, यश और प्रयाण वर्मा।
0: डोंडी लोहारा बलोदा बलोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर। और साथ ही ये जो पत्र हमें प्राप्त हुआ है ये है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े।
1: साथियों, हमें ये अगला पत्र प्राप्त हुआ है पेंटर मनोज साहू, श्रीमती चित्र रेखा साहू, देवेंद्र, लवीना, चंचल वासनी और गरिमा साहू का। मैं अपने श्रोताओं से अनुरोध करूंगी कि पत्र लिखते समय अपना पता जरूर लिखें, ताकि हम आपके नाम के साथ आपका पता भी श्रोताओं को बता पाएं।
0: बिल्कुल सही, और नौ सही जवाब वाला ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा।
1: साथियों, हमें 10 सही जवाब वाले कुल 9 पत्र प्राप्त हुए हैं, और पीयूष बताइए कि ये पत्र हमें कहां से और किसके द्वारा प्राप्त हुए हैं?
0: बिल्कुल, तो ये जो पत्र प्राप्त हुआ है ये है नवागढ़ कटई जिला बेमेतरा से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत जीत, पुष्पांजलि वर्मा।
1: साथियों, भाटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से अगला पत्र प्राप्त हुआ है कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी, पंकज, आयुषी गुप्ता का।
0: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा।
1: अगला पत्र प्राप्त हुआ है हमें, जिन्होंने 10 में से 10 सही जवाब दिए हैं, ग्राम बंगला भटिया बालो

0: से शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्र्यंबिका, लीना आशुतोष अंगारिका।
1: ये जो पत्र प्राप्त हुआ है ये है कुर्मा जांजगीर चंपा छत्तीसगढ़ से, दिलदार मिरी, ज्योति जानवी, दीक्षांत मिरी।
0: बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू।
1: ये पत्र प्राप्त हुआ है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर से, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
0: साथियों अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है दरियापुर बामली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले जी का। नौवा प्रश्न हमें, जो नौवा पत्र है जो हमें प्राप्त हुआ है, जिन्होंने 10 में से 10 सही जवाब दिए हैं, वो है पलेरा तीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा का। तो पीयूष हमने बताने हैं अपने दोस्तों को विजेता का नाम। तो मैंने ना ये जो 10 में से 10 सही जवाब वाले जो पत्र मिले हैं उसकी चिट्ठियां बनाई हैं।
1: हाँ।
0: थोड़ा सा इसमें से एक चिट्ठी को उठाओ और देखो कि आज के विजेता कौन है।
1: चलो उठाता हूँ चिट्ठी, ये पर्चियां, ये निकाल के मैंने दे दी तुम्हें, अब तुम खोलो।
0: अच्छा,
1: किसका
0: तो
1: नाम आता है?
0: ये मिली है मुझे, ये चिट्ठी मुझे, ये पर्ची निकली है हमारे श्रोता भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से, पंकज कुमार गुप्ता, कमला देवी पंकज और आयुषी गुप्ता को। तो हमारे विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और

लौटी मुझे ये पर्ची निकली है हमारे श्रोता भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से पंकज कुमार गुप्ता, कमला देवी पंकज और आयुषी गुप्ता को। तो हमारे विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पीयूष, हम अपने विजेता श्रोता को सुनवाते हैं उनकी पसंद का गीत, उनके हाँ। उपहार स्वरूप। और उनकी गीत सुनवाने के पहले मैं अपने श्रोताओं से अनुरोध करूंगी कि वो अपना डायरी और पेन लेके तैयार रहें, ताकि जब हम सवाल हमारे जवाब आपके अंक 126 के प्रश्न बताएंगे तो वो उसको लिख सकें। तो गाने के बाद हम बताएंगे आपको प्रश्न। आइए सुनते हैं श्रोताओं की पसंद का, विजेता की पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: पहला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था?
1: दूसरा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है?
0: साथियों, तीसरा प्रश्न है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे?
1: चौथा प्रश्न है, द्विवेदी युग में कौन सी भाषा कविता की संवाहिका बनी?
0: साथियों, पांचवा प्रश्न है, आत्म परिचित कविता के रचयिता कौन है?
1: छठवां प्रश्न है, किसी वेबसाइट पर यूजर की प्राथमिकताओं को याद रखने वाली छोटी टेक्स्ट फाइलें क्या कहलाती हैं?
0: साथियों, सातवां प्रश्न है, 2027 का AFC एशियाई कप किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा?
1: आठवां प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के थर्मोस्टेट के रूप में कार्य करता है और भूख, प्यास और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है?
0: साथियों, नौवां प्रश्न है, जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो किस रंग का दृश्य प्रकाश सबसे कम विचलित होता है?
1: साथियों, दसवां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाली सामान्य और निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है?
0: साथियों, पत्र भेजने के लिए हमारा पता है, सवाल हमारे जवाब आपके, अंक 126, युवाणी अनुभाग द्वारा, केंद्र निदेशक, आकाशवाणी छतरपुर, मध्य प्रदेश, पिन कोड है 471001।
1: साथियों, आप हमें इन प्रश्नों के उत्तर ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है youthchatarpur@gmail.com।
0: साथियों, इसके लिए हमें आपके पत्र 29 जून 2026 की सुबह तक प्राप्त हो जाने चाहिए ताकि हम आपके पत्रों को कार्यक्रम में शामिल कर सकें। पीयूष, आजकल पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है तुम्हारी?
1: ठीक चल रही है, बढ़िया। तो राधिका, पढ़ाई लिखाई की बात कर रही हूँ आज, तो पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, लेकिन आजकल मैं एक बात बहुत सुन रहा हूँ और वो बात है नई शिक्षा नीति।
0: हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है।
1: हाँ, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इसमें ऐसा नया क्या है।
0: अच्छा सवाल है दोस्तों। आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 की, जिसे भारत की शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, लचीला और कौशल आधारित बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
1: तो क्या ये पहले से जो शिक्षा व्यवस्था थी उससे थोड़ी सी अलग है?
0: हाँ, काफी हद तक। पहले शिक्षा व्यवस्था 10+2 थी, प्रणाली पर आधारित थी, जबकि नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 संरचना लागू की गई है। इसमें बच्चों की शिक्षा को उनकी उम्र और सीखने की क्षमता के अनुसार 4 चरणों में बांटा गया है।
1: ये तो अच्छा बदलाव लगता है। इस नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि रटने की बजाय समझकर सीखना, यानी सिर्फ परीक्षा पास करना ही लक्ष्य नहीं होगा, बल्कि बच्चों में सोचने, समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करना भी होगा।
0: बिल्कुल पीयूष, पढ़ाई को ज्यादा व्यवहारिक बनाने की कोशिश की गई है।
1: बिल्कुल सही। नई शिक्षा नीति में कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी ज्ञान पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
0: इसके अलावा छात्रों को विभिन्न विषय चुनने की अधिक स्वतंत्रता दी गई है। अब विज्ञान, वाणिज्य और कला जैसी पारंपरिक सीमाएं पहले जैसी कठोर नहीं रहेंगी।
1: बिल्कुल सही। और नई शिक्षा नीति में मातृभाषा और भारतीय भाषाओं में शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया गया है, विशेषकर प्रारंभिक कक्षाओं में।
0: हाँ, उच्च शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा यानी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन शोध को बढ़ावा और डिजिटल शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों को केवल डिग्री धारक नहीं बल्कि सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना है।
1: साथियों, ये नीति सिर्फ पढ़ाई का तरीका नहीं बदल रही बल्कि भविष्य के भारत का निर्माण करने की दिशा में भी काम कर रही है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने पीयूष। दोस्तों, शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण का आधार है, और नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भी

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे प्रेम गीत फिल्म का ये गीत, जिसमें आवाज थी अनुराधा पौडवाल सुरेश वाटकर की।
1: गीत था इंदिवर का, संगीत से सजाया था जगजीत सिंह ने। साथियों, आशा है आप अपने डायरी पेन लेकर तैयार होंगे। अब हम आपको बताएंगे सवाल हमारे, जवाब आपके, अंक 126 के प्रश्न। साथियों

0: यही है कि छात्र केवल जानकारी ना प्राप्त करे बल्कि ज्ञान, कौशल और मूल्यों से भी समृद्ध हो।
1: क्योंकि आज की शिक्षा ही कल के भारत की दिशा तय करेगी।
0: बिल्कुल साथियों, ये तो थी छोटी सी जानकारी नई शिक्षा नीति 2020 पर। अब आपको बता देते हैं रोजगार सूचना। DSSB यानी दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड योग्य उम्मीदवारों से विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हैं।
1: पदों की संख्या है 1979।
0: शैक्षणिक योग्यता पदों के अनुसार भिन्न है।
1: आयु सीमा न्यूनतम 18 से 21 वर्ष और अधिकतम 30 से 35 वर्ष है। पदों के अनुसार अलग अलग आयु सीमा निर्धारित है। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी।
0: आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 है।
1: अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.dssb.delhi.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
0: साथियों, अब चलते चलते बता देते हैं आपको कल के कार्यक्रम। साथियों, कल आप सुनेंगे वार्ता योग का महत्व। वार्ताकार होंगी गरिमा चतुर्वेदी।
1: साथ ही आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता जैव विविधता के क्षेत्र में शोध कर रहे शोधार्थी चंद्र प्रताप तिवारी से बातचीत।
0: साथियों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने का, और आपसे
1: इसी के साथ साथियों अनुमति दीजिए अपने मित्र पीयूष चतुर्वेदी
0: और राधिका वाजपेयी को
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी, मीडियम वेब पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

शुभंकर दत्ता के स्वर में अभी आपने सुना चलो ड्राइवर फिल्म का गीत। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत में सिद्धांत माधव की आवाज में फिल्म का नाम जीना है तो ठोक डाल।

अभी आप सुन रहे थे जीना है तो ठोक डाल, इस फिल्म का गीत, आवाज सिद्धांत माधव की और गीत कुंवर चनेजा का था। आइए फिल्म संगीत के अंत में सुनते हैं कुमार के गीत को, आवाज सोनू निगम की, फिल्म का नाम क्या सुपर कूल है हम।

अभी आपने सुना क्या सुपर कूल हैं हम, इस फिल्म का गीत। आवाज सोनू निगम की थी और गीत कुमार का। इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडिया वेब पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

आइए अब आपको बताते हैं आज के शेष और कल के कार्यक्रमों के बारे में। भोपाल केंद्र से रिले करेंगे शाम 6 बजे।

प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। शाम 6:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम लोकधारा। कलाकार होंगी अनीता परिहार। 7:20 पर ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा। इसमें आप सुनेंगे श्रोताओं के फोन कॉल्स, ईमेल और पत्रों पर आधारित फरमाइशी बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम रमतुला। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। साथ ही होगी भेंटवार्ता। जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हेमंत कुमार से बातचीत। फिल्म संगीत का आप लुत्फ उठा सकेंगे 8:15 पर। मन भावन कार्यक्रम, श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे 10:00। भोपाल केंद्र से रिले करेंगे 8:00 सुर्खियों में, और दिल्ली केंद्र से 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर पब्लिक स्पीक। ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

अब सुनिए कल के कार्यक्रमों के बारे में। कल आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुबह 6:05 पर, किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती किसानी 6:35 पर, विषय रहेगा ऊसर भूमि सुधार, श्री रामचरित मानस गान 6:40 पर, गायक स्वर कविता कृष्णमूर्ति का, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का होगा, चिंतन 6:50 पर, बुंदेली सुगंध के अंतर्गत बुंदेली कहानी ब्याह की आस, इस कहानी को आप सुन सकेंगे सुबह 7:20 पर। कहानीकार होंगे संतोष कुमार पटेरिया, फिल्म संगीत 7:30 पर। लोकरंग कार्यक्रम 9 बजे होगा। इस कार्यक्रम में मुख्य गायक हरवंश पाल व साथी, सह गायक गणपत पाल, भगवान दास। 9:30 पर आप सुनेंगे एक ही गीतकार में अमिताभ भट्टाचार्य की कुछ गीत। 10:05 पर पत्रिका कार्यक्रम खेल पत्रिका, प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। 10:35 पर श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। शाम 5 बजे युववाणी कार्यक्रम, इसमें आप सुनेंगे वार्ता योग का महत्व, वार्ताकार होंगी गरिमा चतुर्वेदी। इसके अलावा भेंट वार्ता जैव विविधता के क्षेत्र में शोध कर रहे शोधार्थी चंद्र प्रताप तिवारी से बातचीत। 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा, कलाकार होंगे राम कुमार प्रजापति व साथी। 7:20 पर घरनी कार्यक्रम, इसमें आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी, प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की।

ये थे कल के कार्यक्रम। मीडियम ऐप पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रिले करते हैं भोपाल केंद्र से न्यूज हेडलाइंस।

0: रानी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपार सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्व भर में लाखों लोगों को

शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। केंद्र सरकार ने दिशा कार्यक्रम न्याय तक समग्र पहुंच के लिए नए समाधानों की तलाश के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। यह कार्यक्रम इस वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च 2031 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए नए रूप में लागू किया जाएगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आज भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से मुलाकात की। 2 दिवसीय अपने प्रवास के दौरान श्री मुरुगन कल देवास जिले के डोकाकुई में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर 23 जून से उनकी जयंती 6 जुलाई तक विशेष पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने नगरीय निकायों के महापौर तथा नगर पालिका अध्यक्ष को वीसी के माध्यम से संबोधित करते हुए ये निर्देश दिए। उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर में भस्म आरती के लिए आज से नई व्यवस्था लागू हो गई है। अब श्रद्धालु बाबा महाकाल की भस्म आरती की अनुमति के लिए 3 माह में सिर्फ 1 बार अपने मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकेंगे। और फीफा विश्व कप 2026 में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। ये मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम की 6 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: TIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बनबघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से दिवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है, जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं, जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है

मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं, इसका उत्तर है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800044559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताजा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह, अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औरव संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए आरोह।

मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, कल कल नदिया बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओ, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है। सोचिए, जरा बताइए तो।

0: हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया।

0: देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
1: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
0: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
1: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
0: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।
0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था?
0: बात स्पष्ट है। उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।

0: कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
1: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
0: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
1: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
0: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

मीडियम पेपर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम लोकधारा। लोकधारा कार्यक्रम में आज कलाकार हैं अनीता परिहार। आपके साथ ढोलक पर संगत कर रहे हैं महेश कुमार, बेंजो पर संजय वंशकार। आइए कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं देवी गीत।

0: अनीता परिहार के स्वर में अभी आपने सुना राम विवाह गीत।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
3: बोल बोल के थक गया,
4: क्या हुआ?
3: नया फीडबैक चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
3: चले
4: ले आ गया नया फीडबैक।
5: आरबीआई कहता है
6: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
0: लोकधारा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवाते हैं विवाह गारी। कलाकार एक बार फिर अनीता परिहार।

0: अभी आपने सुनी विवाहगारी, कलाकार थी अनीता परिहार।
1: वासांसि जीर्णानि यथा विहाय।
2: अरे कब से तुम गीता पढ़ने लगे? क्या गीता ओलंपियाड परीक्षा की तैयारी हो रही है?
1: हाँ हाँ सही समझी, विश्व गीता प्रतिष्ठान उज्जैन की शाखा है हमारे ललितपुर में, वहीं से तैयारी कर रहा हूँ।
2: अच्छा, वो प्रगति विद्या मंदिर के पीछे नई बस्ती में जो स्वाध्याय मंडल है?
1: हाँ हाँ वहीं, उसके संचालक हैं श्री सर्वदेव तिवारी। मोबाइल नंबर है
2: 8858920259
1: 8858920259।
3: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
4: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
0: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकधारा आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से। कार्यक्रम में आज कलाकार हैं अनीता परिहार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवाते हैं दादरा।

अभी आपने सुना दादरा अनीता परिहार से, आइए इन्हीं से अब सुनते हैं चौकड़िया।

अनीता परिहार से अभी आपने सुनी चौकड़िया। आइए लोकधारा कार्यक्रम के अंत में एक बार फिर इन्हीं से सुनते हैं कहरवा।

अभी आपने सुना कहरवा, कलाकार थी अनीता परिहार। इसी के साथ कार्यक्रम लोकधारा अब संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थी अनीता परिहार। आपके साथ ढोलक पर संगत कर रहे थे महेश कुमार और बैंजो पर संजय वंशकार। वीडियो पेपर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

मीडिया वेब पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए गुमशुदा सूचना। गुमशुदा व्यक्ति का नाम अनमोल गुप्ता, उम्र 26 वर्ष, पिता का नाम संतोष कुमार गुप्ता, ग्राम सिरसा दोगड़ी थाना माधोगढ़ जनपद जालौन। गुमशुदा व्यक्ति 2 मई सन 2026 से लापता है। इनकी मानसिक स्थिति कमजोर है। शारीरिक खुलिया इस तरह से है। लंबाई 5 फुट 7 इंच, रंग गेहुआ। ये महरूम रंग की गोल गले की टी शर्ट और ग्रे रंग का लोअर, पैरों में चप्पल पहने हुए हैं। इनके बारे में यदि किसी को कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो इस नंबर पर संपर्क करें 9454403601। सूचना समाप्त हुई।

अब सुनिए एक और गुमशुदा सूचना। गुमशुदा महिला का नाम स्वाति तन्नु, उम्र 22 वर्ष, पिता का नाम अनिल कुमार, ग्राम ऊत थाना सिरसा कलार जनपद जालौन। गुमशुदा महिला 22 मई सन 2026 को रात 12 बजे से लापता है। शारीरिक हुलिया रंग गोरा, ऊंचाई 4 फुट 9 इंच, ये गुलाबी रंग की कुर्ती और काले रंग का प्लाजो पहने हुए हैं। इनके बारे में किसी को कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो इस नंबर पर संपर्क करें 9454401428। सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेब पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन EIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रिले करते हैं भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: TLI है ना।
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
3: दीदी नौकरी लग गई।
4: अरे वाह बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
3: हाँ दी नया मोबाइल।
4: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
3: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
4: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
3: पर दी
4: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
3: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
4: अच्छा।
5: RBI कहता है
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार। समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कूनो में चीता मित्रों से किया संवाद, चीता संरक्षण की ली जानकारी। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में कल से 6 जुलाई तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में विशेष पखवाड़े का होगा आयोजन। उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती दर्शन के लिए अब एक मोबाइल नंबर से 3 महीने में सिर्फ एक बार मिलेगी अनुमति। नई व्यवस्था आज से लागू। और प्रदेश में लंबा हुआ मानसून का इंतजार, 25 जून के बाद इसके राज्य में प्रवेश के आसार।

0: अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने दो दिवसीय कूनो नेशनल पार्क के प्रवास के दौरान आज चीता मित्रों से संवाद कर चीता संरक्षण के प्रयासों की जानकारी ली। राष्ट्रपति ने चीता मित्रों से चर्चा करते हुए उनके द्वारा चीतों की सुरक्षा और आमजन के बीच चीतों के व्यवहार को लेकर किए जा रहे जन जागरूकता के प्रयासों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। श्रीमती मुर्मू ने सभी चीता मित्रों से वन टू वन चर्चा कर परियोजना के लिए उनके द्वारा मानसेवी रूप से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: राष्ट्रपति इसके बाद कूनो से ग्वालियर पहुंची, जहां से वे अपना 5 दिवसीय मध्य प्रदेश का दौरा संपन्न कर दिल्ली के लिए रवाना हुई। प्रदेश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि 23 जून से उनकी जयंती 6 जुलाई तक विशेष पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने नगरीय निकायों के महापौर तथा नगरपालिका अध्यक्ष को मुख्यमंत्री निवास से वीसी के माध्यम से संबोधित करते हुए इसके निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ मुखर्जी का मानना था कि युवा राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने युवाओं को नेतृत्व, शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए प्रेरित किया। इस पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। पखवाड़े के दौरान युवा सम्मेलन, निबंध प्रतियोगिता और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इससे नई पीढ़ी को राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय निकायों द्वारा मार्गों और उद्यानों का नामकरण डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया जा सकता है। इस प्रकार की पहल के लिए सभी प्रक्रियाओं का पालन आवश्यक रूप से किया जाए तथा सक्षम स्तर से सभी स्वीकृतियां अवश्य ली जाएं। केंद्रीय सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आज राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपार सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक जीवन जीने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भोपाल के प्रशासन अकादमी में समान नागरिक संहिता UCC की राज्य स्तरीय समिति की अंतिम दौर की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समिति की अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई दिल्ली में एक अन्य आवश्यक मीटिंग होने के कारण व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो सकी। उनकी अनुपस्थिति में समिति के अन्य सदस्य शत्रुघ्न सिंह, बुद्ध सिंह, गोपाल शर्मा, अनूप नायर और शोभा पैठणकर ने समिति के सदस्य सचिव अजय कटेसरिया के साथ मिलकर अलग अलग 4 सत्रों में विभिन्न पक्षों के साथ महत्वपूर्ण सुझाव लिए। बैठक में देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियों भाजपा, कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था। हालांकि इस महत्वपूर्ण चर्चा में केवल भाजपा और CPM के नेता ही शामिल होने पहुंचे, जबकि कांग्रेस सहित अन्य दल बैठक से नदारद रहे। उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर में भस्म आरती के लिए आज से नई व्यवस्था लागू हो गई है। अब श्रद्धालु बाबा महाकाल की भस्म आरती की अनुमति के लिए 3 माह में सिर्फ 1 बार अपने मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकेंगे। ये व्यवस्था प्रोटोकॉल से आने वाले ऐसे मोबाइल नंबरों पर भी लागू होगी जिनसे हर माह भस्म आरती की अनुमति ली जा रही है। हालांकि महाकाल मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि यह व्यवस्था पहले से ही लागू है, अब इसे और प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है ताकि आम श्रद्धालुओं को भी आसानी से दर्शन का मौका मिले। अब एक ही मोबाइल नंबर का बार बार उपयोग नहीं हो सकेगा। इस नियम से उन आम भक्तों को फायदा होगा जो महीनों तक ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवा पाते थे। मंदिर समिति का दावा है कि इससे भस्म आरती में पारदर्शिता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल आदिरंग शिल्पकार महोत्सव 2026 के समापन समारोह में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम

चारपुरा स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान परिसर में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री महोत्सव के दौरान जनजाति शिल्पकारों द्वारा विकसित उत्पादों एवं डिजाइन हस्तक्षेपों की प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही शिल्पकारों, डिजाइन विशेषज्ञों और प्रतिभागियों से संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम में जनजातीय कार्य मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। समारोह में जनजातीय कला, शिल्प और आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों तथा डिजाइन आधारित नवाचारों की जानकारी दी जाएगी। इस वर्ष जनवरी में आधार ऐप शुरू होने के बाद 3,10,00,000 से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। इलेक्ट्रॉनिक ई और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इस ऐप के बढ़ते इस्तेमाल से पता चलता है कि सेवाओं का लाभ शीघ्र उठाने में इसके प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। इसका उपयोग करके करीब 40,00,000 लोगों ने अपना मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं और करीब 8,50,000 लोगों ने अपने पते अपडेट करने के लिए इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया है। इस एप्लीकेशन के जरिए एक क्लिक में लॉक या अनलॉक करना, उपस्थिति के साक्ष्य के लिए चेहरा प्रमाणित करना, QR बेस्ड परिचय पत्र और विजिटिंग कार्ड जैसी सेवाएं प्राप्त की जा रही हैं। 19वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में डॉ बीना उन्नीकृष्णन की डॉक्यूमेंट्री Y64 विस्पर्स ऑफ द अनसीन का प्रदर्शन किया गया। संस्कृति विभाग के सहयोग से निर्मित यह डॉक्यूमेंट्री अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए पहली बार प्रदर्शित की गई। यह फिल्म प्रदेश के मितावली स्थित मंदिर पर बनी है। अपर मुख्य सचिव संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व शिवशेखर शुक्ला ने कहा कि मध्य प्रदेश के मितावली, मुरैना, जबलपुर और खजुराहो के 64 योगिनी मंदिर हमारी पुरातन स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। मितावली का 64 योगिनी मंदिर, जिसने भारत की पुरानी संसद भवन की वास्तुकला को प्रेरित किया, आज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में भी शामिल है। Y64 विस्पर्स ऑफ द अनसीन जैसी परियोजना इस अद्वितीय विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचा रही है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून तय समय से करीब 7 दिन पीछे चल रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में मानसून की एंट्री के लिए अभी 4 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। 23 जून तक मानसून के छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की ओर बढ़ने की संभावना है, जबकि 25 जून के बाद इसके मध्य प्रदेश में प्रवेश करने के आसार हैं। जबलपुर से हमारी संवाददाता ने बताया कि शहर में आज सुबह आधे घंटे से अधिक अच्छी बारिश हुई, जिससे वातावरण में ठंडक आई और लोगों को उमस व गर्मी से राहत मिली। इस बीच प्रदेश के 21 से अधिक जिलों में आंधी और बारिश की गतिविधियां आज भी जारी हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल की ITI प्रभातपट्टनम में वर्ष 2026 की प्रवेश की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। झाबुआ कलेक्टर ने शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए कन्या माध्यमिक शाला पिटोलबेड़ी के सहायक शिक्षकों और प्रधान पाठक को सम्मानित किया। आज सीहोर जिले के बमूलिया, मुगाली, पांगरा, बागेर और नौगांव के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को NHRC दिल्ली द्वारा NQAS प्रमाणित किया गया। शिवपुरी में PM जनमन आवास योजना में लापरवाही को लेकर ग्राम पंचायत करई के सचिव को निलंबित किया गया। गुना में युवा संगम अंतर्गत जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन 24 जून को शासकीय महाविद्यालय चाचौड़ा बीनागंज में किया जाएगा। और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान खंडवा के द्वारा प्लम्बिंग एवं सैनिटरी वर्क का 6 दिवसीय प्रशिक्षण 10 जुलाई से आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कूनो में चीता मित्रों से किया संवाद, चीता संरक्षण के लिए जानकारी। प्रदेश के सभी नगरी निकायों में कल से 6 जुलाई तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में विशेष पखवाड़े का होगा आयोजन। उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती दर्शन के लिए अब एक मोबाइल नंबर से 3 महीने में सिर्फ एक बार मिलेगी अनुमति, नई व्यवस्था आज से लागू। और प्रदेश में लंबा हुआ मानसून का इंतजार, 25 जून के बाद इसके राज्य में प्रवेश के आसार। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेब पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन EIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा।

0: ग्राम सभा कार्यक्रम सुन्ने वाले सबै भैया बहन खो नंदनी बहन की राम राम। और भैया बहन हो देखो कहीं नहीं जात के अच्छो अपनो शरीर स्वस्थ चाहने हैं तो देखो अपन को साफ सफाई को ध्यान रखने पर है ना। जब ही तो देखो अपन अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं शरीर अच्छो रहे है तो। अब देखो साफ सफाई की बात कर रहे हैं तो देखो अपन खो चाहे देखो घर की हो चाहे देखो घर की बाहर की हो चाहे शरीर की हो तो अपन को देखो गंदगी से नहीं रहने आए का गंदगी से अपन रहे तो देखो दुनिया भर की हारी बीमारियां अपन का घेरती हैं है ना। अब देखो बरसात को मौसम भी आ रहा है तो देखो अपन को मच्छर से बच के रहने हैं। मच्छर के काटवे से डेंगू मलेरिया भी हो जाता है तो डेंगू को मच्छर देखो साफ पानी में पनपत है ना। कूलर टंकी के पानी को अपन खाली करके रखवे जिससे डेंगू को मच्छर न पनपे। और डेंगू के मच्छर से बचाव के लाने घर के आसपास पानी न भरो रहे मच्छरदानी लगा के सोने हैं फुलबाजू के कपड़े पहनने हैं। डेंगू मलेरिया को अपन पतो कैसे कर हैं तो देखो अपने भैया बहन को हम बता रहे हैं कि अगर डेंगू मलेरिया कोनो भैया बहन को हो जाए तो इनमें का है कि तेज बुखार ठंड लगबो से दर्द कमजोरी और देखो शरीर में दर्द और त्वचा के ऊपर देखो लाल चकत्ते से बन जाते हैं। अगर कोनो भैया बहन को जे लक्षण दिखाई देवे तो तुरंत अस्पताल जाके डॉक्टर से इलाज जरूर कराना है और इको जांच जरूर कराने है। अब जानेंगे के कछु घर में दवाई गोली रखी सो अपने भैया बहन बे खा ले में तो देखो अपने डॉक्टर खुद ही नहीं बनने आए जानेंगे के रखी गोली सो खा ले तो ऐसा अपने भैया बहन को बिल्कुल नहीं करने। तेज बुखार होवे ठंड लगवे शरीर में दर्द होवे तो अपन तो देखो तुरंत इलाज के लाने अस्पताल जावे और जा तो हती देखो डेंगू मलेरिया से बचाव के लाने कछु चर्चा। और अब अपने भैया बहन को बता रहे हैं कि देखो बसेले जीव जंतु से भी अपने भैया बहन को बच के रहने काय से देखो अब पानी भी तनक तनक बरसन लगो है ना। तो ऐसे में जोन बसेले जीव जंतु होत वे अपने बिल से बाहर निकलते हैं तो उनसे बचबो अपने भैया बहन को बहुत जरूरी है। ई के लाने अपन आसपास के साफ सफाई रखवे कचड़ा घास झाड़ियां को हटा देवे। रात में घर से बाहर जाए तो देखो टॉर्च को उजियारो लेके जावे जिसे कहे अपने नेचे को दिखत रात और उजियारो अपन को जरूर ले जाने हैं। अब जैसे सांप है बिच्छू मकड़ी मधुमक्खी ततैया इन सब विषैले जीव जंतुओं से के काटवे से अपन खा बचने हैं। भगवान न करे कोनू भैया बहन को अगर काट भी ले तो देखो अपन को झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ने कछु भैया बहन का है कि झाड़ फूक के चक्कर में पड़ी रह तो देखो अपन को झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल नहीं पन्ने अपन तुरंत अस्पताल जाके डॉक्टर से इलाज करवावे और जांच करवावे। वैसा तो देखो अपन सावधानी रखवे चाहे देखो खेती बाड़ी की काम की हो चाहे देखो घर में हो और देखो अपन को हम तो सभी भैया बहनों से यही कहें कि देखो सावधानी ही सुरक्षा है। बसेले जीव जंतुओं से अपन खुद बचवे और अपनी बाल बच्चन को बचा के रखवे। और भैया बहनों बतकाव तो करते ही रहे मिलना ई विराम के बाद।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंसर हिल्स।
0: भैया बहन देखो संदेशन के बाद अब फिर कहूँ अपन स्वागत कर रहे थे ग्राम सभा कार्यक्रम में। और भैया बहन देखो अपन खेती किसानी से जुड़े है ना और अपनी देखो फसल खा कीट और रोग राई से बचावे के लाने कीटनाशक को छिड़काव अपनी फसल में अपन करते हैं तो अपने भैया बहनों को दवाई छिड़का समय कछु सावधानियां सोई रखना है। दवाई के लेबल पर जो कछु निर्देश लिखे रहते हैं उनको अच्छी तरह से तो पहले पढ़ लेवे। छिड़काव करते समय अपन देखो मास्क दस्ताने चश्मा और पूरे शरीर का ढकवे वाली कपड़े पहनने हैं। तेज हवा में छिड़काव नहीं करने आए। छिड़काव कर समय कोनो तरह को धूम्रपान बीड़ी सिगरेट तम्बाकू नहीं खाने आए। ई दवाई से अपने बाल बच्चन को दूर रखने हैं और खाली डब्बा होवे सो खाली डब्बा को दूर फेंक देवे या गड्ढा खोद के उखो नष्ट कर देवे। दवाई छिड़काव के बाद अपने भैया बहन को बढ़िया तरीके से हाथ धोने हैं चेहरा को धोने हैं और कपड़ा साफ करने हैं। जे सब बातें अपने भैया बहनों को अपनाने हैं जिसे अपने भैया बहन कीटनाशक के छिड़काव से बचाव कर सकते हैं। और भैया बहन हरों मिल रहे हैं इब्राहिम के बाद।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया

0: जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंसर हिल्स।
2: और भैया बहन भाई, देखो अपने कार्यक्रम में हम लेके आए हैं एक भेंट वार्ता, जी को विषय है जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हेमंत कुमार से बातचीत। तो लो अपने भैया बहन सुने।
3: हमारी ग्राम सभा के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। श्रोताओं, आप सभी जानते हैं समय समय पर हम अपने श्रोताओं के लिए विशेष व्यक्तित्व से मुलाकात आपकी करवाते रहते हैं, और आज आकाशवाणी के स्टूडियो में हमारे बीच आए हुए हैं जैव विविधता के क्षेत्र में सम्मान प्राप्त, जैव विविधता के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हेमंत रेखवार जी। आइए हम आपको इनसे मिलवाते हैं, कैसे ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद सर, और इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर बुलाया गया
3: जी,
4: और
3: जी।
4: मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।
3: हेमंत जी, हमें बहुत खुशी हो रही है कि देखिए बुंदेलखंड के गौरव अगर हम आपको कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जैव विविधता बोर्ड के द्वारा आपको जो राशि सम्मान स्वरूप मिली है, कैसा लगा आपको जब आपको सम्मान मिला? फिर हम इसकी कहानी आपसे सुनना चाहेंगे, कितनी मेहनत आपने की यहाँ तक पहुँचने के लिए, लगातार काम किए, कैसे प्रोजेक्ट्स आपको मिले, कैसे फील्ड में चुनौतियां रही?
4: मुझे जब मंच से मेरा नाम पुकारा गया पुरस्कार के लिए तो बहुत ही खुशी हुई कि आज मेरे किए गए कामों का परिणाम मुझे मध्य प्रदेश शासन, भारत सरकार, वन मंत्रालय, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग के संयुक्त रूप से मुझे सम्मानित किया गया उस मंच से, तो बहुत ही खुशी हुई कि आज मैं इस क्षेत्र में सफल हुआ।
3: बहुत अच्छा लग रहा है देखिए कि आप सफल हुए हैं, और हर एक युवा अपने स्तर पर काम करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि कोई बहुत जल्दी सफल हो जाए। तो आप जब जैव विविधता संरक्षण से जुड़े, किस सन में आप बोर्ड पहुंचे और कैसे आपको जानकारी लगी?
4: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्राजील में रियो डी जेनेरियो शहर में एक सम्मेलन आयोजित किया।

0: 2004 नियम बनाए गए। मध्य प्रदेश जैवविविधता नियम के अंतर्गत बोर्ड में वर्ष 2013 में हम मास्टर ट्रेनर के रूप में जुड़े। तब से आज तक जो है हमने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया, ग्रामों में किसानों के साथ मिल करके, महिलाओं को जागरूक करके, स्कूलों में, कॉलेजों में। रही बात है हमारे बुंदेलखंड की जैव विविधता, तो हमारे बुंदेलखंड में ऐसी ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो आज संकट ग्रस्त है और एवं विलुप्त की कगार में है। जैसे हमारे छतरपुर जिले का जो कठिया गेहूं है
1: जी
0: वो मदर सीड है। वो वैज्ञानिकों ने रिसर्च में भी पाया कि अगर हम इसको खाते हैं तो हमें सुगर नहीं हो सकती। और दूसरा ये अपने यहाँ की छतरपुर जिले की जो मूंग दाल होती है अपने यहाँ बरसात में होती है, जैविक। अभी भी पन्ना से जो निकलती है केन नदी, उसके किनारे के गांव में आज भी वो देसी मूंग और ज्वार का पैदावार होता है और उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है, जो आजकल जो हाइब्रिड मूंगों में वो गुण नहीं पाए जाते हैं। इन्हीं जो हमारे मदर सीड हैं
1: जी,
0: जो विदेशों के वैज्ञानिक हैं संकरण करके हाइब्रिड बीज को बनाया है जिसमें उतनी पोषक तत्व की मात्रा नहीं होती है। तो मैं ये संदेश देना चाहूंगा बुंदेलखंड के क्षेत्र के किसानों को, लोगों को, जो हमारी परंपरागत चीजें थी, हमारा खान पान था, वो सभी मायने में अच्छा था। उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती थी, शरीर स्वस्थ रहता था, चाहे आपके अनाज हो, दाल हो, दलहन हो, तेलहन हो, सब्जियां हो, मसाले हो, वो सारी चीजें हमारे शरीर को स्वस्थ रखती थी। और सबसे आह्वान भी करता हूं कि सारे लोग जो हैं हमारे जो पुरानी चीजें उनमें विशेष ध्यान दें। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आने वाला समय एक ऐसा आएगा कि आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि खान पान इतना प्रदूषित तो हो चुका है। आप देख रहे हैं उतनी हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, उससे 4 गुना ज्यादा मरीजों की संख्या बढ़ रहे हैं। कारण क्या है? कारण हमारे पास है, हम जो है पुरानी परंपरागत खान पान रहन सहन की विधियां छोड़ते जा रहे हैं। हमारे जो पूर्वज थे वो धातु का उपयोग करते थे खान पान में,
1: करते थे धातु से बने बर्तन भी उपयोग करते
0: धातु
1: थे।
0: से बने बर्तन, आप पानी का बर्तन हो या फिर खाना बनाने का बर्तन हो या फिर खाना खाने का बर्तन हो,
1: जी
0: उससे ये सिद्ध होता था कि कोई भी अगर गरीब परिवार है, व्यक्ति है, वो काजू किस्मत सेब महंगे फल फ्रूट नहीं खा सकता है, तो जो शरीर में हमें आवश्यक जो तत्व चाहिए थे वो हमें लोहा से आयरन मिलता था, तांबा से जिंक, तांबा पीतल कांसा, जिनसे हमें वो आवश्यक तत्व मिलते थे जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते थे। आज क्या हो रहा है? जस्ट उल्टा, प्लास्टिक को अपना रहे हैं, प्लास्टिक में खाना खा रहे हैं, उसी में हम रख रहे हैं गर्म चीज। तो प्लास्टिक का एक रिसर्च आया है कि 0.25 माइक्रोन आपके खाने में घुल जाएगा, जबकि प्लास्टिक से बहुत ही गंभीर बीमारियां हो रही हैं। आप सब लोग देख रहे हैं, कहीं शुगर है, साइलेंट अटैक है, कैंसर है, इन बीमारियों का एक कारण ये भी है।
1: जी बहुत बढ़िया हेमंत जी आपने बताया है। तो हेमंत जी, आप जैव विविधता के लिए लगातार आपकी टीम काम कर रही है, पूरा का पूरा बोर्ड काम कर रहा है और ये विश्व स्तर पर यूनाइटेड नेशन द्वारा काम हो रहे हैं और अलग अलग संस्थाएं भी लगी हुई हैं। हम अगर जैव विविधता संरक्षण की बात करें तो आप बुंदेलखंड के भ्रमण पे जब पहुंचे तो आपने गांव में क्या समस्याएं देखी? ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है या हमारा वातावरण परिवर्तित हो रहा है, तो इस संदर्भ में क्या कुछ आप देखते हैं और कैसे आप और इस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि हमारा जीवन स्वस्थ रह पाए?
0: देखिए, मैं इसमें ये बताना चाहूंगा आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हमारे जो शरीर का स्वस्थ रहना प्रकृति के संतुलन पर निर्भर है, आपके वैज्ञानिकता के संतुलन पर निर्भर नहीं है। हमारा जीवन प्रकृति के संतुलन पर निर्भर है। हमें स्वस्थ वायु चाहिए, स्वस्थ खान पान चाहिए, स्वस्थ रहन सहन चाहिए और स्वस्थ पीने के लिए पानी चाहिए। ये हमारे शरीर की स्वस्थ को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो हमारा परंपरागत जो खान पान है, हमें सब्जियां जो जैविक खाद से पैदा करें, फलों के लिए अगर आपके पास जगह उपलब्ध है तो फल के पेड़ पौधे लगाएं, सब्जियां हो गए, आपके मसाले भी आपको चिन्हित करें जहां पे जैविक चीजें मिलती हो। अगर आप जैविक जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे आप उतने ही ज्यादा स्वस्थ रहेंगे।
1: छतरपुर जिले में या आसपास टीकमगढ़ है हमारा और निवाड़ी है, झांसी है, महोबा है, इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं? क्या आशाएं आपको लगी हैं कि अब लोग जागरूक हो रहे हैं? और निश्चित रूप से जो हम देख रहे हैं घरों के आसपास, हम पहले सोखते गड्ढे बनाते थे, अब भी जागरूकता के कारण ये लगातार इस पे काम हो रहे हैं ताकि जो वर्षा का जल है वो धरती के नीचे जाए, तो इस संदर्भ में आप कैसे उन्हें जागरूक कर रहे हैं?
0: देखिए, हम इन संदर्भ में बहुत सारे ऐसे उदाहरण जैसे कोई 50 साल का वृक्ष लगा हुआ है गाँव में, फल का है, तो हम लोगों से कहते हैं कि आपने लगाया है, तो सीधा उनका जवाब होता है कि हमारे पूर्व

0: पूर्वजों ने लगाया है।
1: जी जी हाँ
0: तो हमारा कहना रहता है कि आप क्या देके जा रहे हो आने वाली पीढ़ी को, तब उनकी समझ में आता है कि जब हमारे पूर्वज हमें देके गए हैं कुछ चीज, तो हमें भी उनको आने वाली पीढ़ी को देके जाना है। तो हमने जहाँ जहाँ भी जागरूकता कार्यक्रम किए तो वहाँ पर ये परिवर्तन आया है। उन्होंने जैव विविधता संरक्षण करने के प्रयास किए हैं, नुकसान नहीं होने दिया है, और जीव जंतुओं का जो शिकार करते हैं उन लोगों शिकार भी छोड़ा है। उन लोगों ने जैविक कृषि की तरफ भी उन्होंने ध्यान दिया है कि ये हमारे व्यक्तिगत हित में फायदा करता है। तो हमें होगा ये पहल करना होगा कि हम जो स्वस्थ कैसे रह सके, प्रकृति से जुड़कर स्वस्थ रह सकते हैं, प्रकृति से दूर रहकर नहीं स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए आपसे आह्वान है, आप लोगों से अपील है, प्रकृति के साथ जुड़िए, प्रकृति की सेवा करें, प्रकृति की रक्षा करें, आप भी सुरक्षित, जीवन सुरक्षित, देश सुरक्षित, प्रदेश सुरक्षित।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए। श्रोताओं, आज जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हेमंत कुमार जी हमारे बीच थे, और कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी जैव विविधता संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएंगे। हेमंत जी, आज आपने स्टूडियो में आकर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अबे अपने भैया बहन सुन रहे थी भेंट वार्ता। जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हेमंत कुमार से बातचीत, और भैया बहन हरो सुनवा रहे हैं आज रमतुला कार्यक्रम। श्रोताओं के फोन कॉल्स, ईमेल और पत्रन पर आधारित बुंदेली लोकगीतन को फरमाइशी कार्यक्रम है। ई कार्यक्रम की प्रस्तुति है रविन्द्र कुमार प्रजापति जी की। तो लो अपने भैया बहन सुने रमतुला कार्यक्रम।

0: रमतुला कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनों को नंदनी बहन की राम राम। और भैया बहन हरो कार्यक्रम शुरू कर है उससे पहले बता दें ई कार्यक्रम के कछु फोन नंबर। पहला नंबर है 2415 88 यानी 241588 और दूसरा नंबर है 2980 29 यानी 298029। और भैया बहनों देखो छतरपुर को एसटीडी कोड है 076 82 यानी 07682। तो अपने भैया बहनों को ई नंबर पे फोन नंबर लगा के अपनी पसंद को लोकगीत सुनने हैं। रमतुला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक सोमवार को दिन में 3 बजे से 3:30 बजे तक करी जाते हैं और ई कार्यक्रम को प्रसारण सोमवार के दिन ग्राम सभा में होते है और ई कार्यक्रम की प्रस्तुति है रविन्द्र कुमार प्रजापति जी की। तो भैया बहनों शुरू करते हैं आज को जो रमतुला कार्यक्रम हास्य गारी बलराम यादव की गाई भाई सुनवे के लाने आए कछु फोन कॉल्स।
1: ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव बोल रहे हैं। आज मुझे बलराम यादव जी का हास्य गीत है एक नंबर का वो सुनना है, सुना दीजिए।
2: हेलो रामतिला कार्यक्रम, हरीश एक बार बोल रहे हैं सानदा से, पहले नंबर का सुनवा देना मैं।
3: जी दीदी मैं ग्राम बिड़ोरा तहसील सेवड़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश से लोकन गुर्जर बोल रहा हूँ जी। मुझे बलराम यादव की आवाज में हास्य गाड़ी सुनना है।
2: ग्राम परमाणी जिला महोबा उत्तर प्रदेश से देवदी ने हर बार बात कर रहा था जी। आज पहले नंबर का बलराम यादव जी की आवाज में लोकगीत सुनना है हमको।
4: हम सब नाम नामदेव बोल रहे हैं ग्राम कोच देवी जिला छतरपुर से, पहले नंबर को लोकगीत सुना दो मैडम।
5: हेलो रामपुला से मैं फूलचंद पाल मनकारी से बोल रहा हूँ, मुझे बलराम सिंह यादव जी की आवाज में लोकगीत सुनना है।
6: चंडपुरा परमाणी दिनेश अग्रवाल बोल रहा हूँ, पहले नंबर का लोकगीत सुना दो आवाज।
7: हाँ गुड्डू चावे बोला पमहरी डूढ़ा जिला सागर से, आज बिन्ना सुनवा दे पहले नंबर को बलराम सिंह यादव की आवाज में लोकगीत।
0: और भैया बहनो यही लोकगीत सुनबे के लाने हमारे पास कछु चिट्ठियां पाती सोई आई हैं। जा चिट्ठिया लिख पहुंचाई है ग्राम बा पोस्ट गोना कुसमाड़ थाना सोजना तहसील मेहरोनी जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से कैलाश नारायण नामदेव दीपक कुमार द्रौपदी देवी राम देवी ब्रजेश कुमारी अखिलेश कुमारी लखनलाल चाहना आकाश रानी परी और सूरभी नामदेव ने ग्राम ममना जिला हमीरपुर से रामशरण विश्वकर्मा साहिल मंजू इंजल रंजना वंदना दिव्यांशी तो इनके सभी परिवार वाले चिट्ठिया हमें लिख पहुंचाई है ग्राम बा पोस्ट बिरखेड़ा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल मलखान सिंह पाल सुधांशु पाल और इनके सभी घर वाले। जय चिट्ठिया लिख पहुंचाई है सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गोहर और वंदना गोहर ने। तो लो अपन सुनत है इन सभी भैया बहनों की पसंद पे जा हास्यगारी गावे वाले भैया है बलराम यादव।

0: रमतुला कार्यक्रम में श्रृंगार गीत माता दिन विश्वकर्मा व साथियों को गाँव सुनभि के लाने आए कछु फोन कॉल्स।
1: हेलो रमतुला से, दीदी हम बोल रहे महुआ मोहल्ला हवेली दरवाजा से। दीदी हमें आज दूसरे नंबर का लोग भी सुनवा देना, जो भी कलाकार हो हमें कलाकार।
2: मैं वीरेंद्र कुमार शुक्ला ग्राम पंचायत रतवास पोस्ट मवई जिला टीकमगढ़ से बात कर रहे हैं। सुनवा दो बहन माता दीन विश्वकर्मा जी की आवाज में।
3: ग्राम चिन्नौरी तहसील जिला सीपी से आपका नियमित श्रोता साले ग्राम विश्वकर्मा बोल रहा हूँ। दीदी आज श्री माता दीन विश्वकर्मा जी को गाँव लोग भी सुनवा रही है दीदी।
4: हेलो रमतुला जी, मैं ग्राम तरसुमा जिला मुरैना से हरबिलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ। आज नंबर दो पर माता दीन विश्वकर्मा के स्वर में श्रृंगार गीत सुना देना।
5: मैं बोल रही हूँ ममता नामदेव ग्राम मऊ बुजुर्ग पोस्ट धामना जिला टीकमगढ़ से। हमको सुनना है माता दीन जी का लोक गीत।

0: पन्ना मदरिस से एके पांडे बात कर रहा हूँ। मुझे आप ये हेलो रहमतुल्लाह कार्यक्रम में दूसरे नंबर का येलो गीत स्वर में सुनवा दीजिए।
1: हम ग्राम पोस्ट देरी जिला छतरपुर से मंजू नाम जो बात कर रहा है दीदी, हमें दूसरे नंबर को लोकगीत सुनवा दो दीदी।
2: और भैया बहन हो जोई लोकगीत सुनवे के लाने हमारे पास कछु चिट्ठियाँ सोई आई है। जा चिट्ठिया लिखी है स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू और पप्पी भाटिया ने, दतरेंगी से भगवत वर्मा, शांति, लीलावती, विनीता और रोद वर्मा ने, ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसोलिया, बन्ने बुजुर्ग पलेरा से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष। जा चिट्ठिया लिख पहुँचाई है बसारी दरवाजा छतरपुर से राकेश दास कबीरपंथी, सार्थक, पवित्रा और उनके सभी परिवार वाले। जा चिट्ठिया लिखी है ग्राम रतवास से वीरेंद्र कुमार शुक्ला और गीता शुक्ला ने, जवाहर पुरा टीकमगढ़ से घनश्याम दास अहरवाल, अंजलि, कृष्णा और कीर्ति ने, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, निहारिका और वंश बत्ता ने। तो लो सुनत है जो श्रृंगार गीत जीखों गा रहे हैं माता दीन विश्वकर्मा बसाथी।

0: रमतुला कार्यक्रम में तीसरो घनश्याम दास गुप्ता को गौ भाव लोकगीत सुनबे के लाने आए कछु फोन कॉल्स।
1: मैं सुरेंद्रपाल से गुर्जर बोल रहा हूँ, ग्राम बाबूपुरा तहसील खोज जिला जालौन से। मुझे तीसरे नंबर का लोकगीत सुनना है घनश्याम दास गुप्ता का।
2: मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से। तीन नंबर का गीत सुनवा दीजिए, कछी आई है घनश्याम दास गुप्ता
3: जी। मैं ग्राम्बा पोस्ट गोना कुसमार थाना सोजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपका अपना रेडियो में से दीपक कुमार नामदेव बात कर रहा है। दीदी आज हमको घनश्याम दास गुप्ता जी की आवाज में लोकगीत है वो वाला लोकगीत सुनवा देना जी।
4: हम ग्राम पोस्ट गोना कुसमार थाना सोजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर से आपका अपना नियम श्रोता कैलाश नारायण नामदेव बोल रहे हैं जी। सर आज हमको सुनना है घनश्याम दास गुप्ता के स्वर में लोकगीत सुनना है।
5: दीदी हम श्रीराम रेडियो शो सत्संग मोहरी कला जिला टीकमगढ़ से यश पाठक बोल रहे हैं। आज आप सुनवा दो तीसरे नंबर पे है घनश्याम दास गुप्ता की आवाज।
6: हम बरसारी दरवाजे से राकेश वर्मा बोल रहे हैं, तीसरे नंबर का जो है घनश्याम गुप्ता की आवाज में सुनना है अपन को लोकगीत।
0: और भैया बहन यही लोकगीत सुनबे के लाने चिट्ठिया पाती आई है। खेल बाजार पानी पसते हैं नरेश मल्होत्रा, नीतू लक्ष्य लाड़ो और कोयल मल्होत्रा। जा चिट्ठिया लिख पहुंचाई है ग्राम बापोस्ट सौरई जिला ललितपुर से संतोष नामदेव अभय अनिल ज्योति संजना भारती और उनके सभी परिवार वाले। जा चिट्ठिया लिख पहुंचाई है भटीपुरा महुआ से कृष्ण कुमार गुप्ता कमला देवी सुधा कविता पंकज आयुषी और मीहू। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। जा चिट्ठिया लिखी है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर सुमन मिथिलेश तारिणी सूरज ज्योति और रियांश ठाकुर ने। मोटक्का माफी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल कमला अंतिम ललित मनीषा शुभम भावना कनिका आदित्य और इनके

सभी परिवार वाले। जय चिट्ठिया लिखी है अमृतला जिला महोबा उत्तर प्रदेश से रामजीवन राजपूत, राममिलन भूरा, सूर्यांश, ऋषिकांत और इनके सभी घर वाले। जय चिट्ठिया लिखी है ग्राम मझुआ कला पोस्ट अमरौनिया जिला छतरपुर से लखन लाल यादव, नेहा, अनन्या, अनुष्का, अभिमन्यु यादव। जय चिट्ठिया लिखी है ग्राम तरसमा जिला मुरैना से हरिविलास सिंह तोमर, दीपू, अमित, अंकित, डॉली, वर्षा और इनके सभी परिवार वाले। तो लो सुनाते हैं इन सभी भैया बहनों की पसंद पे जो लोकगीत जीखों गा रहे हैं घनश्याम दास गुप्ता।

0: रमतुला कार्यक्रम में मुन्ना लाल राजपूत को लुगी सुनबे के लाने आया कछु फोन कॉल्स।
1: सर हम बोल रहे हैं ग्राम खड़ी के राजे लाशोक नगर से आसाराम राजा मुन्ना लाल राजपूत को सुनवा दो बहन जी।
2: हाँ योगेश जांगड़े बे में तरह छत्तीसगढ़ मुन्ना लाल राजपूत जी के स्वर में लोकगीत सुनवा देंगे।
3: ग्राम पिपलिया वराई तहसील बेगमन जिला राजधानी जगत सिंह चढ़ारगुल्ला मैडम मुन्ना लाल राजपूत की आवाज में लोकगीत सुनने मैडम।
4: हम पाटा मोहल्ला पर जिला से हमें दीदी चौथे नंबर को सुनवा दो मुन्ना लाल राजपूत की आवाज में।
5: जी मैं राजू यादव ग्राम उपरेंका थाना मुस्करा तहसील सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से बहन और क्रमांक चार नंबर को सुनवा दूं बहन।
0: और भैया बहनों यही लोकगीत सुनबे के लाने हमारे पास कछु चिट्ठियां पाती सोई आई हैं। गांधी पार्क मनपुरा तहसील पिछोर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से मनोज नामदेव मंची शिवम राहुल नरेंद्र धासू छोटू मिन्नी सपना खुशबू रीना रेखा ममता और इनके सभी परिवार वाले नेपाल पैलेस सागर से तिलक राना मीना राना मोनिका नूपुर रिश्का और रॉबिन ग्राम दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से द्वारका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक झाविंद वर्मा ग्राम लोहारी जिला खंडवा से राजेश कुमार धनजे राहुल कुमार धनजे विशाल शीला और गायत्री धनजे खुदी रोड मानपुर से विजय बैद रानी बैद महिमा बैद नीतू और इनके सभी परिवार वाले जा चिट्ठिया लिखी है ग्राम दुर्गापुर पोस्ट सैंधी जिला निवाड़ी से अनिल कुमार अहरवाल ज्योति संतोष बतीश दयाल शिवानी और सालनी ने तो इन सभी भैया बहनों की पसंद पे सुनना है मुन्ना लाल राजपूत को गाओ जो लोकगीत।
6: गम खाते रहो मैं तो।

और भैया बहनों जो तो है तो आज को रमतुला कार्यक्रम अब अपने भैया बहनों को बता रहे हैं अगले रमतुला कार्यक्रम की झलकियां। अगले रमतुला कार्यक्रम में पहली झलकी विभागारी ज्योति जाटव की गाई भई अपन सुन है।

और भैया बहन हो जो तो हो तो आज को रमदूला एक संगे आज को जो रमदूला कार्यक्रम पूरा भाव है। ई कार्यक्रम की प्रस्तुति हती रविंद्र कुमार प्रजापति जी की। अब अपने भैया बहन सुन रहे थे रमदूला कार्यक्रम और भैया बहन हो देखो अब बात करें अपन से आज की सीख की। आज की सीख को विषय है जॉन डार पे बैठे ओई।

0: ई विषय पे आकाश कुमार पांडे से बातचीत और आज की सीख हुई है जरे पे नॉन डारत और देखो अपनो तपनो बतका हुई है और मनोरंजन हुई है एक संगे हो रही है अब सो बेरा सो अपनी बहन नंदनी खो दे आज्ञा भैया बहन और राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा मीडियम वेव पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन EIR पर। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को है। रिले करते हैं भोपाल केंद्र से सुर्खियों में।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत की समुद्री सैन्य क्षमताओं में अभूतपूर्व वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी और आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
2: भारत को कल 3 नए नौसैनिक जहाज मिले। इनमें स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी, सर्वे वेसल संशोधक और एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट अग्रय शामिल हैं। इन जहाजों को कल कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना को समर्पित किया। इन जहाजों और भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विश्लेषक कॉमोडोर केडी जोशी। कॉमोडोर जोशी, आकाशवाणी समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: कॉमोडोर जोशी, अलग अलग जहाजों की विशेषताओं पर बात करने से पहले मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि इन जहाजों का भारतीय नौसेना में शामिल होना कितना महत्वपूर्ण है, खासकर इसलिए क्योंकि ये पूरी तरह स्वदेशी रूप से निर्मित हैं। इनके निर्माण में भारतीय उद्योग जगत के साथ साथ 200 से अधिक एमएसएमई की भी व्यापक भागीदारी रही है, तो आपके विचार में ये कितना महत्वपूर्ण है?
3: देखिए, ऐसा है कि आज के वातावरण में जो दुनिया में चल रहा है, ये बहुत जरूरी है कि भारत को अपने पैरों पे खड़ा होना है, आत्मनिर्भर बनना है। उस दिशा में जो सरकार ने काम किए हैं इस बारे में और जो अपनी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी ऊपर जा रही है उसके कारण, चाहे वो शिप बिल्डिंग में हो, चाहे शिप निर्माण में जो अलग अलग इक्विपमेंट काम में आते हैं, बनाए जाते हैं, वो आजकल भारत में बन रहे हैं। इसका उदाहरण ये 3 जहाज हैं जिनमें करीब 75 से 80% इक्विपमेंट जो है वो भारत में बना हुआ है। जैसा कि आपने बताया, करीब करीब 200 एमएसएमई लघु उद्योग इसमें इन तीनों जहाजों में इनके साथ जुड़े हुए थे, ताकि उन्होंने जो इक्विपमेंट बनाए, उन्होंने जो सिस्टम्स बनाए, उन्होंने जो आइटम्स बनाए, वो इन जहाजों में लगे हुए हैं। और ये मैं कह सकता हूं कि भारत के लिए ये बहुत स्वर्णिम मौका है कि पूरे इस दिशा में अच्छी प्रगति करें, और जितना ये गैप रह गया पूरी तरह इंडिजिनस होने में, जो आप कह सकते हैं कि जो वेपन्स और सेंसर्स हैं उसमें ये थोड़ा गैप ज्यादा दिखता है, बाकी जो डिपार्टमेंट हैं शिप बिल्डिंग के, जिसमें शिप की जो बॉडी है जिसको हल बोलते हैं वो, और शिप के मशीनरी जो अंदर लगी हुई है, वो प्राइमरीली हमारे पास अच्छी कैपेबिलिटी है उनका भारत में ही निर्माण करने की और भारत में ही उसको अपने जहाजों पे लगाने की। अगर आप देखिए, भारत में जहाज निर्माण का जो कार्य है वो अभी यहीं पे हो रहा है। कुछ दशक पहले हम लोग जहाज बाहर से मंगवाते थे, आज जहाज घर में बन रहे हैं। और जिसके कारण, अगर आप दोबारा से इसी 3 जहाजों का उदाहरण लेंगे, तो 200 एमएसएमई जैसा आपने बताया, करीब करीब 4,000-4,500 लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, 10,000 के करीब लोग इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, जिनमें कह सकते हैं कि इनको एम्प्लॉयमेंट मिली है।
2: जी कॉमोडोर जोशी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि किसी देश की समुद्री शक्ति जितनी मजबूत होती है उसका आर्थिक और सामरिक प्रभाव भी उतना ही अधिक होता है। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री के ही शब्द।
4: मैरिटाइम क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। समुद्र से

0: विकास जुड़ा है, सुरक्षा जुड़ी है, समृद्धि जुड़ी है। आज दुनिया का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है। दुनिया को जोड़ने वाले डेटा के विशाल नेटवर्क समुद्र के नीचे से गुजरते हैं। आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी रिसोर्सेज और नई ऊर्जा के स्रोत भी समुद्र से ही जुड़ेंगे। इसलिए जिस देश का समुद्री सामर्थ्य मजबूत होगा, उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत होगा।
1: कॉमोडोर जोशी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी और अब आपसे ये बात करना चाहूंगी, आपसे ये समझना चाहूंगी कि स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। भारतीय नौसेना ने इसे एक अत्याधुनिक और शक्तिशाली युद्धपोत बताया है। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताइए कि स्टेल्थ फ्रिगेट आखिर होता क्या है।
2: अभी आप देखें, इसके लिए जो स्टेल्थ शब्द है उसका मतलब जानना थोड़ा सा जरूरी है। स्टेल्थ का मतलब है छुपा हुआ, आंखों को एकदम ना दिखे, उस हिसाब से बोला जा सकता है। तो अगर आप देखिए, पुराने जो पहले जो जहाज बनते थे, आप उनको अपने से दूरबीनों से या अपनी आंखों से थोड़े डिस्टेंस तक देख सकते थे। बट आजकल जो जहाज बन रहे हैं वो जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो आज की डेट में करीब 10 से 50 से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तक किसी भी जहाज को, उसकी जो प्रेजेंस है कि जहाज मौजूद है कि नहीं 300 किलोमीटर दूर, उसको देखने की क्षमता रखते हैं। बट अगर जहाज की कंस्ट्रक्शन ऐसी हो, उसका निर्माण ऐसा हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो रेडार है जिसको हम बोलते हैं, जिससे एक जहाज दूसरे जहाज को देख सकेगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, दूसरे जहाज की अगर कंस्ट्रक्शन एक अलग तरह से हो, तो ये रेडार जो है वो देख नहीं पाता है उसको। तो रेडार जो एक इक्विपमेंट है, वो एक बीम फेंकता है, वो बीम वापिस आती है दूसरे जो टारगेट जहाज है उससे। लेकिन जो स्टेल्थ शिप है, वो टारगेट, वो जो बीम उसके ऊपर जाएगी, उस बीम को कहीं और डायरेक्ट कर देगा, ताकि वो जिसने बीम आपके पास भेजी है उस जहाज को वापिस ना मिले, उस जहाज को आपकी प्रेजेंस का, आपके वहां मौजूद होने का पता नहीं लगेगा। इस जो टेक्नोलॉजी है उसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और उसमें सिर्फ जहाज निर्माण नहीं, उसका जो पेंट लगाया जाता है उसका भी योगदान रहता है।
1: आपने काफी विस्तार से हमारे श्रोताओं को समझाया कि आखिर स्टेल्थ फ्रिगेट होता क्या है। आगे बढ़ते हैं कॉमोडोर जोशी, और कल यानी कि 21 जून को विश्व योग दिवस के साथ साथ विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है, और इसी दिन सर्वे वेसल लार्ज INS संशोधक को भी नौसेना में शामिल किया गया। इस जहाज की भूमिका क्या रहेगी और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है?
2: इंडियन नेवी में जो सर्वे वेसल्स है, उनका काम जैसे कि नाम दर्शा रहा है, सर्वे करना है। मतलब उसको नीचे, जो समुद्र के नीचे है, उसको देखना है कि क्या चीजें मौजूद हैं, कुछ डेबरी है क्या, कुछ शिप्स का रेक है क्या, उसमें समुद्र का जो बॉटम है उसमें इवन नहीं होता है। जैसे सड़क ऊंच नीच होती है, वैसे समुद्र का जो नीचे का हिस्सा रहता है, जो पानी के नीचे, वो भी ऊंचा और नीचा रहता है। तो अगर कोई जहाज किसी ऐसी जगह से जा रहा है जहां उसको सफिशियंट डेप्थ नहीं है, जहां गहराई नहीं मिल रही है, तो जहाज के ग्राउंडिंग होने का खतरा रहता है। तो अब जहाज को कैसे पता चलेगा कि मुझे उस जगह पे नहीं जाना है? तो वो चार्ट में उनकी डेप्थ वगैरह लिखी जाती है, और वो डेप्थ कौन लिखता है, शिपरेक इंडिकेट कौन करता है, डेबरी है करके इंडिकेट कौन करता है, वो सर्वे वेसल्स जो है वो सर्वे करते हैं, और वो फाइनली इंफॉर्मेशन चार्ट्स पे दर्शा दी जाती है। और अगर कोई शिपरेक वगैरह है तो मरीनर्स को सबको बता भी दिया जाता है बुलेटिन के द्वारा कि इस एरिया में फला फला जगह पे एक शिपरेक है, आप इस जगह से ट्रांजिट मत कीजिए। तो इन जहाजों का जो काम है वो बैकग्राउंड में चलता रहता है, बट अत्यंत महत्वपूर्ण काम है। संशोधक जो है, हमारे पास अभी करीब करीब चार सर्वे वेसल्स हैं, उसमें से संशोधक जो है वो लेटेस्ट परसों कमीशन हुआ है, और इसमें अंडर वाटर सोनार साइड स्कैन लगा हुआ है, जो साइड स्कैन सोनार है उससे जहाज की कैपेबिलिटी दाएं बाएं देखने की, नीचे देखने की, किसी एक टाइम पे ज्यादा अच्छे से बढ़ती है, और जो फिर वो एक पिक्चर बनती है उसके सामने कि एक समुद्र के जो नीचे सतह है वो कैसे दिख रही है, वो ज्यादा अच्छे से आती है सामने। तो इनकी जो सर्वे कैपेबिलिटी है, क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं।

0: प्रोसेसिंग इनकी ज्यादा बेहतर है, ये वाले जहाज ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं, और उसके कारण पूरा मैरिटाइम सेक्टर विच डजंट ओनली इंक्लूड भारतीय नौसेना के जहाज अपितु बाकी जो कमर्शियल ट्रेडिंग है उनके पास भी ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है जो ये काम करते हैं अपने सर्वे वेसल्स।
1: आगे बढ़ते हुए मैं आपसे बात करना चाहूंगी INS अग्रय की। ये अर्नाला श्रेणी का एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैली वॉटर क्राफ्ट है। इसकी खास विशेषताएं क्या हैं और ये भारतीय नौसेना की क्षमताओं को किस प्रकार मजबूत कर रहा है?
0: जी, जैसा कि नाम में आ रहा है शैलो वाटर क्राफ्ट, शैलो का मतलब है कि ज्यादा गहराई में नहीं, उसका काम है कि वो जो कम गहराई वाले एरिया है उसमें ये एंटी सबमरीन ऑपरेशंस कर सकता है। एंटी सबमरीन का मतलब है कि जो समुद्र के नीचे से जहाज को अटैक होने के चांसेस हैं वो उनका पता लगा सकता है। तो काफी सारे जहाज हैं जो थोड़े डीप वाटर्स में जाके वो अपने ASW ऑपरेशन, दैट इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस कर सकते हैं। ये वाला जो जहाज है ये शैलो वाटर में भी कर सकता है। आजकल की डेट में एसिमेट्रिक वॉरफेयर काफी बढ़ गया है, हमको पता नहीं चलता है कि किस जगह से हमको एक वल्नरेबिलिटी है या थ्रेट आ सकता है, तो कई बार शैलो वाटर से भी थ्रेट होता है। तो ये जो जहाज है ये वहां पे पता कर सकता है कि वहां से कोई थ्रेट आ रहा है कि नहीं आ रहा, और उसके पास में इसके लिए एडवांस सोनार सिस्टम्स लगे हुए हैं, और अगर कोई ऐसा थ्रेट है जो कंफर्म भी हो जाता है, लाइट वेट टॉर्पिडोज लगे हुए हैं जिससे इसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है इन जहाजों के द्वारा।
1: कमांडर जोशी, आपसे सबसे पहले मैं एक चीज समझना चाहूंगी यहाँ पे कि महासागर यानी कि ओशन और डीप सीज में क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं, और ऐसे में जितना हम अपने मैरिटाइम डोमेन को स्ट्रांग करेंगे तो आपको लगता है कि मैरिटाइम डोमेन को जितना हम सशक्त बनाएंगे उससे हमारी क्रिटिकल मिनरल्स की डिपेंडेंस बाकी के बाहर के देशों पर कम हो पाएगी?
0: जी, आपने बिल्कुल सही बोला। ये अगर जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो अपने जो हर एक कंट्री का एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, वो उसके शोर तटीय लाइन से करीब 200 माइल्स तक समुन्दर के अंदर, वो EEZ बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके अंदर जो अगर नीचे कुछ मिनरल्स वगैरह पाए जाएंगे तो वो देश के समझे जाते हैं, उसके बियॉन्ड जो है वो इंटरनेशनल एरिया माना जाता है। तो अगर हमारा जो माइनिंग कैपेबिलिटी है वो अगर सशक्त बनाई जाए, डीप अंडर वाटर माइनिंग कैपेबिलिटी, तो समुन्दर की सतह के नीचे ये अंदाजा है कि बहुत ज्यादा जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्शन के लिए, चाहे अपने डे टू डे इवन मेडिकल अगर आप देखे जाएं, या फिर किसी और भी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर में काफी सारे मिनरल्स हैं जो देश में अपनी जमीन पे नहीं है लेकिन हो सकता है वो सागर के अंदर मौजूद हो और जो हमें जरूरत है। तो हमारा सबसे पहले बनता है कि वो ये जो एरिया है हमारा वो थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रहे, उसमें ज्यादा अपने को वल्नरेबिलिटीज ना रहे, अपने को उसमें ज्यादा इंटरफेरेंस ना रहे बाकी लोगों से, क्योंकि ये जो है ऑल्दो EEZ बोल सकते हैं बट नेविगेशन फ्रीडम सभी कंट्रीज को, सभी जहाजों को वहां से है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहाज रुक जाएंगे, आना जाना रोक दिया जाएगा, तो जहाज आते जाते रहेंगे दूसरी कंट्रीज के, लेकिन हमारा इतना ये होना चाहिए कि हम लोग अगर कुछ कर रहे हैं नीचे तो वो सिर्फ हमारे लिए कर रहे हैं, वो कोई और उसपे हक नहीं जमा पाएगा, तो ये अपना एरिया बनता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं कि ये सारा का सारा जो इकोसिस्टम बनाया गया है, चाहे वो सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर बनाया हो, चाहे वो शिपिंग सेक्टर को 70,000 करोड़ रुपए देके बनाया गया हो, ये सारा का सारा इसको इसका जो एक अफेक्ट बोलते हैं विच इज एक डोमिनो अफेक्ट बनेगा इसका, उसमें बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट ये बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो सरकार का इस टाइम जो एक फोकस एरिया लग रहा है, एक ऐसा एक अंदाजा है कि भारत को एक समुद्री शक्ति बनाया जाए।
1: जी कॉमोडोर जोशी, आपने बहुत ही विस्तार से हमें इस पूरे विषय के बारे में हमें समझाया। आपने हमें ये भी बताया कि क्या महत्व है उन तीनों शिप्स का जो कल कमीशन हुई है प्रधानमंत्री द्वारा। आपने अपना इतना बहुमूल्य समय आकाशवाणी को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, शुक्रिया।
1: अभी आप सुन रहे थे भारत की समुद्री सैन्य क्षमताओं में अभूतपूर्व वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे

0: रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी और आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: सुर्खियों में

मीडियम पेपर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और प्रेमलता की स्वर में अभी आपने सुना बड़ी बहन फिल्म का गीत। गीत राजेंद्र कृष्ण का था। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी की स्वर में शकील बदायूनी के गीत को। संगीत दिया नौशाद ने और फिल्म का नाम बरसात की रात।

बरसात की रात, इस फिल्म में अभी आपने सुना मोहम्मद रफी को। गीत शकील बदायूनी का था और संगीत नौशाद का। आइए एक बार फिर सुनते हैं मोहम्मद रफी के स्वर में पालकी फिल्म का गीत।

नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। रोजगार केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है। जब युवाओं को अवसर मिलते हैं तो न केवल उनका भविष्य संवरता है बल्कि देश की प्रगति को भी नई गति मिलती है। इसी सोच के साथ सरकार ने रोजगार सृजन

0: से जोड़ने के उद्देश्य से पिछले वर्ष प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की। पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। ये योजना विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। क्या है ये योजना, इससे युवाओं, कर्मचारियों और नियोक्ताओं को क्या लाभ होगा, इन्हीं सब महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में। हमारा विषय है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा और क्षेत्रीय आयुक्त प्रणित जोशी। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। आप हमारे स्टूडियो नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है उसके बाद 2331-04-81 या 2371-7117 या 2371-7106 और 2331-44-44 पर फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289-094044। इस पर आप प्रश्न भेज सकते हैं और ट्विटर हैंडल है @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए आपके जो भी सवाल हैं और शंकाएं हैं पूछ सकते हैं। तो आगाज करते हैं कार्यक्रम का। सबसे पहले पूर्णेंदु जी, आपसे जानना चाहूंगी कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक ऐसी योजना है जो कि यहाँ हमारे फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करने के लिए एक सरकार ने एक इंसेंटिव स्कीम जारी की है। ये इंसेंटिव स्कीम इनफैक्ट 1 जुलाई 2025 से शुरू होकर अभी अगले 2 साल के लिए रहेगी और इस इंसेंटिव स्कीम में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों को इंसेंटिव दे रही है भारत सरकार, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जो भी जनरेट हो रहा है उसको एक बढ़ावा मिले और जो एम्प्लॉयज किसी भी एम्प्लॉयर के साथ जुड़ रहे हैं वो वहां पे कुछ 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट बनी रहे।
0: जी प्रणित जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ईपीएफओ बहुत मेजर रोल निभा रहा है, क्या है, अपने श्रोताओं को इस बारे में बताएं।
2: हाँ, सो ये स्कीम जो है भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ईपीएफओ को सौंपा है। तो ईपीएफओ इंडिया एंड वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे यहाँ जो फॉर्मल एम्प्लॉयज है लगभग 8 करोड़ फॉर्मल एम्प्लॉयज हमारे यहाँ कवर्ड है। तो ये स्कीम में जो भी बेनिफिट्स है वो ईपीएफओ के थ्रू हम देने की प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें कोई द बेस्ट पार्ट इज इसमें कोई एडिशनल कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट नहीं है आइदर फॉर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स। डायरेक्टली ईपीएफओ एनरोलमेंट से ही सारे बेनिफिट्स हम लोग ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट करके इनको दी जाएगी।
0: ये तो एक तरह से मध्यस्थता का काम कर रहा है ईपीएफओ नियोक्ता और जो कर्मचारी के बीच में। हमारे पहले श्रोता जुड़ गए हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
3: नमस्कार,
0: सवाल पूछे अपना।
3: हाँ, विकसित भारत के अंतर प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कितने लोगों को रोजगार मिला और किस तरह का रोजगार मिला?
2: हाँ रमाशंकर जी, ये स्कीम 1 अगस्त 2025 से शुरू हुआ है। तो अभी तक लगभग 70 लाख युवा फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय जो पहली बार फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आए हैं, लगभग 70 लाख से ज्यादा लोग हमसे जुड़े हैं। इसमें लगभग 13.29 लाख तक का बेनिफिट अभी हमने उनको, इन्होंने 6 महीने कंप्लीट कर चुके हैं। तो इनका पहला किस्त का जो बेनिफिट है हमने उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए।
0: जी पूर्णेंदु जी, आपने इंसेंटिव्स की बात की थी, तो इंसेंटिव्स जो, अगर मैं सबसे पहले कर्मचारी जो पहली बार जो नौकरी पाने वाले हैं तो उनको क्या मिलता है, किस तरह से मिलता है, ये बताएं।
1: कर्मचारियों के लिए जो यहाँ पे बेनिफिट मिलती है इस स्कीम में वो है जो पहले 6 महीने तक अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्थान को ज्वाइन करने के बाद वहां रह जाता है तो उनका जो एवरेज वेज होता है उसका आधा सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम वो 15,000 रूपये, तो ये पूरा बेनिफिट हो गया। पहले 6 महीने में उनको 7,500 रूपये तक मिलते हैं और अगले 6 महीने तक अगर वो एक हमारे यहाँ पे वो लिटरेसी कोर्स उनको करना पड़ता है, 6 महीने के बाद अगर उन्होंने वो कंप्लीट कर लिया और लगातार

0: और वहीं एम्प्लॉयड रह गए तो उनको 12 महीने के बाद 15,000 रूपए तक की राशि दी जाती है।
1: तो 6 महीने के बाद और फिर 6 महीने
0: दो बार दिया
1: जी जी है। आगे भी चर्चा करते हैं, पहले अपने श्रोता का सवाल पूछ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला से हैं राकेश जी।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
2: जी। तो मेरा एक प्रश्न ये है कि जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है तो इसमें हमें क्या क्या प्रावधान रखना पड़ता है और इसके लिए हमें फॉर्म किस तरह से भरना पड़ता है, ये मेरा प्रश्न है।
0: राकेश जी आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना पड़ता, आपको केवल ईपीएफओ के साथ जुड़ना पड़ता है। ईपीएफओ के साथ जुड़ने के लिए जो ईपीएफओ में कवरेज के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी कंपनी जहां पे भी आप काम कर रहे हो, जो भी संस्थान हो जहां आप काम कर रहे हैं, वो अगर ईपीएफ में कवर्ड हैं, और जो बिल्कुल नए लोग अगर आ रहे हैं उस कंपनी में जो 1 अगस्त 2025 के पहले कहीं भी हमारे ईपीएफओ से जुड़े हुए नहीं थे तो वैसे लोगों के लिए एक इंसेंटिव है, और इसलिए इसमें कोई अलग से आपको कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ईपीएफ में आप किसी भी एम्प्लॉई का कंप्लायंस हो रहा है तो वैसे लोगों को ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट मिल जाता है।
1: जी अगर हम नियोक्ता की बात करें तो उनको इस योजना से क्या लाभ मिलेगा और जो इसमें उनको भाग लेने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, खासकर जैसे अगर कोई कंपनी है अगर वो हाल फिलहाल में ज्वाइन किया, उसने ईपीएफओ में रजिस्टर किया है या स्टार्टअप है नया, तो उन सबके लिए क्या प्रावधान है?
0: कंपनी के लिए 2-3 चीजें आवश्यक हैं। पहला, अगर वो ईपीएफओ में कवर्ड नहीं है तो पहला तो उनका कवरेज जरूरत होगी यहाँ ईपीएफओ में। साथ ही उनके जितने भी एम्प्लॉई हैं, जो नए एम्प्लॉई आके ज्वाइन कर रहे हैं उनके बेसिस पे, और जो पुराने एम्प्लॉई जो भी हैं जो कहीं और से आके उनके यहाँ जुड़ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं फर्स्ट टाइमर एंड रीज्वाइनिंग, तो दोनों के नंबर को जोड़ा जाता है। और जो इंसेंटिव है, अगर 10,000 रूपये तक की सैलरी है एम्प्लॉई की तो उसमें 1,000 रूपये, अगर 20,000 रूपये तक की सैलरी है 10 से 20,000 तो 2,000 रूपये, और अगर 20,000 से लेकर और 1,00,000 रूपये तक की अगर सैलरी है तो 3,000 रूपये का इंसेंटिव एम्प्लॉयर को मिलता है। और ये एम्प्लॉयर को प्रत्येक महीने जैसे मिलता जाएगा, अभी पहले 6 महीने किसी का सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट हुआ, फिर अगले महीने भी किसी न किसी का 6 महीने होगा, तो वैसे उनको बेनिफिट मिलता रहेगा।
1: ये भी डीबीटी के थ्रू ही,
0: ये सारे बेनिफिट एम्प्लॉयर को डीबीटी के थ्रू मिलेगा। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो केवल एक ही होती है, एक ईपीएफ में कवर्ड हो, दूसरा उनका जो पैन डिटेल्स है वो हम लेते हैं उनके, क्योंकि हम पैन से जो लिंक्ड उनका बैंक अकाउंट होते हैं उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होती है, डीबीटी एम्प्लॉयज के लिए होती है।
1: जी हरिद्वार से जुड़े हैं रवि जी।
3: हाँ जी नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
3: हाँ जी थैंक यू, और महानुभव विशेषज्ञ को भी नमस्कार।
0: नमस्कार
3: जी। सर मैं जानना चाहता हूँ, सर ये प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना है सर, इसके लिए जो ये एक युवा है वो मतलब क्या क्वालिफिकेशन होकर मतलब इस योजना का हिस्सा बन सकता है, मतलब इस योजना से लाभ उठा सकते हैं, इसमें एक युवा की क्या मतलब क्वालिफिकेशन होती है,
1: क्या पात्रता क्या होनी चाहिए? हाँ,
4: रवि जी इसमें जैसे कि पूर्णेंदु जी भी पहले बताया कि इसमें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, आपको बस ईपीएफओ के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो अगर पहली बार आपके संस्था में आप ज्वाइन कर रहे हैं, पहली नौकरी में ज्वाइन कर रहे हैं, कोई युवा अगर कोई ज्वाइन कर रहे हैं तो इनको फेशियल ऑथेंटिकेशन के माध्यम से उमंग ऐप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस ऐप में उनको एक नंबर दिया जाएगा, उसको हम लोग यूएएन कहते हैं, और उसके बाद 6 महीने अगर उसी संस्था के साथ आप जुड़े हैं और आपका जो जो ग्रॉस वेजेस है आपके, आपका जो सैलरी है वो 1,00,000 से कम होना चाहिए, उनके लिए एक स्कीम है, तो 6 महीने के बाद आपको पहला किस्त 7,500 तक दिया जाएगा और उसके बाद एडिशनल 6 मंथ्स के बाद आपको दूसरा केस दिया जाएगा।
1: जब एम्प्लॉयर्स की बात आगे कंटिन्यू रखते हैं, जैसे मैंने पूछा कोई नया अगर स्टार्टअप आया है और 50 से कम अगर उसके एम्प्लॉयज हैं या 50 से ज्यादा हैं, तो उन सब के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं अलग अलग कि मिनिमम आपके पास अगर आपको इतने रखने होंगे, ईपीएफओ में रजिस्टर होना होगा तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं।
0: जी, एक स्कीम की सबसे प्राइमरी कंडीशंस में से एक है कि आपने एडिशनल एम्प्लॉयमेंट उस संस्थान ने कितना जनरेट किया है। तो उसने अगर किसी के पास 50 से कम एम्प्लॉई हैं, अगर उन्होंने मिनिमम 2 भी एम्प्लॉई को जनरेट कर दिया, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अगर नया आ गया, और अगर 50 से ज्यादा उस संस्थान के सदस्य हैं तो वैसे केसेस में 5 उनको कम से कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, तभी वो इसके लिए पात्रता के भागी होंगे। लेकिन साथ में एक और चीज बता दूं आपको कि जहां पे एम्प्लॉय

0: इस और एम्प्लॉयर का जो टोटल हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारे ईसीआर पे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न होता है। तो न केवल ये कितना उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा, दो आदमी होंगे या पांच आदमी होंगे, बल्कि इन लोगों के लिए कंप्लायंस भी रिक्वायर्ड होगा 6 महीने के लिए।
1: हाँ,
0: तो लगातार अगर कंप्लायंस आएगी 6 महीने तभी ईपीएफओ को पता चलेगा कि ये एम्प्लॉय इनके साथ जुड़े हुए थे, उनका वेज कितना था और कितने रुपए के इंसेंटिव के हकदार हैं। जो थ्रेशोल्ड का एक और दूसरा भी कॉम्पोनेंट है हमारा कि जो नेट एम्प्लॉयमेंट है कितना जनरेट हुआ, उसका हम लोगों ने एक रखा हुआ है जो एक पर्टिकुलर पीरियड हमने माना हुआ है, राइट। एक पीरियड है कि अगर अगस्त के पहले, अगस्त 2025 के पहले अगर कोई भी इस संस्थान हमारे साथ जुड़ी हुई थी तो उसको हम तभी मानते हैं, उसके पिछले 12 महीने का एवरेज देखते हैं कि कितने लोग थे, और वहां से फिर उसका वो एवरेज हो गया बेसलाइन जिसे हम कहते हैं। तो बेसलाइन से कितना बढ़ रहा है, अगर अगस्त 2025 के बाद कोई भी संस्थान है तो उसका बेसलाइन होगा हमारा वो 20 रहेगा मिनिमम, वहां पे एवरेज हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, तो उस बेसलाइन के बाद फिर हम उसको आगे काउंट करते हैं।
1: छोटी छोटी चीजें देखी जाएंगी और तभी इंसेंटिव के आप पात्र बनेंगे। बिहार से जुड़े हैं हिमांशु जी। हिमांशु जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? आपसे अनुरोध है कि अपने जो आपका रेडियो है सेट है उसकी आवाज कम कर दें।
2: मैडम कर दिया मैंने।
1: जी जी
2: कर दिया, कर दिया।
1: सवाल
2: मैडम, मेरा ये सवाल था कि क्या मैं अभी भी एम्प्लॉयमेंट में हूँ एनआईसी मुजफ्फरपुर में, ठीक है
1: जी,
2: लेकिन थर्ड पार्टी जो मुझे पेमेंट कर रही है तो ये जो एम्प्लॉयमेंट के ये मेरा जो है ईपीएफ नहीं कट रहा है मैम, तो क्या हम लोग लेकिन पहले से जो कंपनी हमारी थी उनके द्वारा मेरा जो ईपीएफ कटा हुआ है तो क्या हम लोग इसमें इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है?
1: जी पुनीन्द्र जी,
0: इसके लिए सबसे पहली चीज है कि आपको बिल्कुल नए एम्प्लॉय होना पड़ेगा। आप चूंकि पहले से ईपीएफ से जुड़े हुए हैं तो जो एम्प्लॉयज को जो बेनिफिट मिलती है उसमें आप हकदार नहीं होते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर है अगर आप कहीं भी और दूसरी जगह पे ज्वाइन करते हैं तो उसको एज रीज्वाइनी हम लोग आपके जो भी यहां पे ज्वाइन करने के हिसाब से एम्प्लॉयर को इंसेंटिव मिलेगा।
1: महाराष्ट्र के ठाणे से जुड़े हैं गुरुनाथ जी। हेलो।
3: हाँ जी मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार,
3: मैं गुरुनाथ बोल रहा हूँ ठाणे महाराष्ट्र।
1: जी जी।
3: हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन है जैसे ईपीएफओ में जो नई कंपनियां होती है जैसे ज्वाइंट होते हैं लेकिन एम्प्लॉयज का पैसा तो कटता है, तो कभी कभी ये देखा गया है कि सही तरीके से पैसा वहाँ पे जमा नहीं हो पाया है, फ्रॉड कभी कभी फ्रॉड भी देखा जाता है, गड़बड़ी देखी जाती है उसमें, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। और सही मतलब जो पैसा सैलरी से कट जाता है एम्प्लॉयज का जिस कंपनी से, तो वो जमा हुआ है कि नहीं जो ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये कैसे चेक करें? थैंक यू
1: जी। प्रणय जी,
4: गुरुनाथ जी ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो एम्प्लॉयज से जो एम्प्लॉयर पैसे काटता है पीएफ जमा करने के लिए, अगर वो एम्प्लॉयर पीएफ जमा नहीं करता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा एंड उस एम्प्लॉयर को एक क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर उनको जेल भी भेजा जा सकता है। तो अभी इसमें ये सवाल है कि इसमें आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो आपका जो पासबुक है आप अपने पासबुक में आप चेक कर सकते हैं हर महीने की जो आपका अमाउंट कट रहा है वो सही से जमा हो रहा है नहीं है, एंड उसमें पासबुक में आपको ये भी दिखेगा कि आपका इंटरेस्ट कितना जमा हुआ है और टोटल कितना अमाउंट है, तो आपके लॉगिन या फिर आप उमंग ऐप से भी आपका पासबुक आप देख सकते हैं इसमें।
1: जी, बिहार के सासाराम से जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी।
5: जी नमस्कार, मेरा ये सवाल था, सभी विशेषज्ञों को मेरा नमस्कार, कि जैसे कि हम लोग जो अभी 2025 से जो अभी लागू हुआ है 1 अगस्त, उससे पहले जितने भी जैसे कि अलग अलग कंपनी में जो लोग जॉब करते हैं या बीच में कहीं छूट जाता है, तो कैसे मालूम चलेगा कि उनका पीएफ जो कटता है या पीएफ का जो इतना संभाग उनमें रहता है क्रेडिट, तो कैसे मालूम चलेगा कि वो कट रहा है कहाँ कैसे?
0: अमित जी, अमित जी नमस्कार। आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया गया होगा, आपने जहां कहीं भी काम किया होगा तो अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के थ्रू आप एम्प्लॉई पोर्टल पे जाके ईपीएफओ के आप लॉगिन कर लें। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो जो भी आपका आधार लिंक्ड

फोन नंबर है उसके उसके थ्रू ओटीपी से आप रिसेट कर सकते हैं, और जितने जगह पे भी आपने काम किया होगा जो यूएएन से लिंक्ड होगा वहां पे आपको सारे डिटेल्स दिख जाएंगे आपके अपने पोर्टल पे ही।

0: उसको बेसिक तो उनके हाथ में है कि उनका ईपीएफओ का अकाउंट बना नहीं है, बना है या नहीं है, अभी एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं है। तो उसके बाद उनको ये देखना है कि उनका हर महीने पासबुक उनको चेक करना है कि हमेशा वो हर महीने उनका एवरी मंथ डिपॉजिट हो रहा है नहीं हो रहा है।
1: जी, ओडिशा से जुड़े हैं देशदीप दास जी। दास जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो दास जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है?
2: जी नमस्ते।
1: नमस्ते
2: शर्मा जी और अरोरा जी, नमस्ते।
1: जी
3: नमस्ते
2: जी। पर मेरा सवाल है, क्या नियोक्ता को अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा और योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक है?
3: नियोक्ता को अलग से मैं नहीं कहूंगा कि रजिस्ट्रेशन करना है, उनके पोर्टल पे जाकर और आपको केवल नियोक्ता को अपना पैन देना होता है और जो एक बैंक अकाउंट उनका देना होता है जो पैन लिंक्ड होता है, उसी को हम इनफैक्ट इस स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन मान सकते हैं। सेपरेट रजिस्ट्रेशन बस उसी तरह का होता है। उसके बाद नियोक्ता का जो भी बेनिफिट होता है, बिकॉज पैन के साथ हम इसको लिंक करते हैं, तो अगर मान लीजिए एक ही पैन के साथ बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो हम उन सबों को पैन एग्रीगेट करके जो बेनिफिट देते हैं वो पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट में देते हैं। तो बेसिकली आपको पैन टैन का डिटेल्स होगा, नियोक्ता का जीएसटी नंबर आप दे सकते हैं वहां पे, और साथ में बैंक अकाउंट नंबर जो कि पैन के साथ लिंक्ड हो वो एम्प्लॉयर पोर्टल पे ही देना होता है, उसके लिए आपको और कहीं अलग रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है।
1: और इन्होंने दस्तावेज के बारे में पूछा था,
3: और कोई दस्तावेज नहीं चाहिए,
1: जरूरत नहीं है, बार बार बता रहे हैं आपको इस कार्यक्रम के जरिए। ये जो योजना है, अगर आप फॉर्मल नौकरी के हिसाब से, रोजगार सृजन के हिसाब से बात करें, तो बहुत बड़ी 99,000 करोड़ रुपए से इसका आउटले है। मेजर अगर बात करें जो असंगठित क्षेत्र से जो आते हैं लोग, उनको संगठित क्षेत्र में लेकर जाना, तो उनके लिए योजना किस तरह से आप लाभकारी होते देखते हैं?
3: इसमें दो तीन तरह से हम इसको देख सकते हैं। सबसे पहला, जो एम्प्लॉयज पहली बात की 6 महीने तक वो रहेंगे एक जगह, तभी उनको बेनिफिट मिलेगा, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि वहां रुकें। एम्प्लॉयर के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि कोशिश करें कि उनके एम्प्लॉयी वहीं पर रह जाएं। एम्प्लॉयी को एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आपको पता होगा कि जैसे नए एम्प्लॉयी अगर कोई भी ज्वाइन करते हैं तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज है। तो यहां एक ऐसी स्कीम है जहां पे एम्प्लॉयर को भी फायदा हो रहा है, एम्प्लॉयी को भी फायदा हो रहा है। जनरली अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जनरली एक कॉन्सेप्ट था इंडिया में कि अगर एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयी के अगेंस्ट है, एम्प्लॉयी है तो एम्प्लॉयर के अगेंस्ट है। यहां इन दोनों को साथ में लेकर चलने की बात हो रही है।
1: और ये होता था कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, भाई आप हमें नौकरी पे रखोगे तभी एक्सपीरियंस मिलेगा,
3: और जब तक नौकरी में आएंगे नहीं तब तक एक्सपीरियंस होगा नहीं। तो एक बहुत अच्छी स्कीम है जहां उनको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भी सरकार प्रोत्साहित कर रही है और एम्प्लॉयर को भी प्रोत्साहित कर रही है कि आप ऐसे लोगों को रखेंगे और सस्टेन करें वहां 6 महीने 1 साल के लिए, तो आपको भी इंसेंटिव मिलेगा।
1: जी, दिल्ली से जुड़े हैं धर्मवीर जी।
4: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर नमस्कार।
3: नमस्कार
4: सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो कुछ जो एम्प्लॉयर होते हैं जो उनकी एज लिमिट निकल जाती है, तो क्या सरकार को चाहिए नहीं कि उनकी एज लिमिट को थोड़ा बढ़ा के रखना चाहिए, जिसको जरूरत है वो ही इसमें भी पा सके, और इसमें जो एम्प्लॉयर है वो कितनी इसकी सैलरी इसको डिसाइड कर सकता है?
0: तो इसमें दो पार्ट आपने पूछा है, एक तो एज का पूछा है। तो स्कीम तो जनरली युवा एम्प्लॉयज को प्रोत्साहन मिलता है, बट ऐसा कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर कोई 40 साल में भी पहली बार संगठित क्षेत्र में नौकरी पा रहा है तो वो इस बेनिफिट के लिए एलिजिबिलिटी है। एंड दूसरा
1: सैलरी का पूछा है।
0: सैलरी, हाँ, तो इसमें मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये था कि जो हाई अर्निंग हाई इनकम ग्रुप है तो उनको ये बेनिफिट ना दिया जाए। तो 1 लाख से जो नीचे है उनका, जिसका ग्रॉस सैलरी है, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है।
1: अक्सर हम देखते हैं कि जैसे लोगों को सामाजिक सुरक्षा के बारे में जानकारी नहीं होती, तो इस योजना के जरिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को किस तरह मजबूत किया जा रहा है?
0: तो इसमें जो सामाजिक सुरक्षा ईपीएफओ, हम लोग 3 स्कीम चलाते हैं, तो जो भी ये पीएमवीबीआरवे के तहत हमसे जुड़ते हैं तो उनको ये 3 स्कीम के बेनिफिट मिलते हैं। तो इनमें से प्रोविडेंट फंड है जो कि आपके लाइफ टाइम अर्निंग्स को वेरी गुड इंटरेस्ट रेट के साथ हम लोग रिटर्न करते हैं, और इसमें

0: बहुत सारे पार्शल विड्रॉल्स के प्रावधान है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पेंशन एक बहुत बड़ा चीज है इसमें, ना केवल उनका सुपर एनुएशन पेंशन बल्कि उनके डेथ केस, इन केस ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी उनको फैमिली को भी पेंशन मिलता है, एंड इंश्योरेंस का भी एक कॉम्पोनेंट है लाइफ इंश्योरेंस का।
1: जी पुनिंदु जी, जैसे अक्सर शायद किसी ना किसी के मन में ये प्रश्न होगा कि जो ये योजना है रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाई गई, लेकिन ऐसे में यदि कोई जो नियोक्ता योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद कर्मचारी को नौकरी से हटा देता है या उसे लंबे समय तक कार्य में नहीं बना के रखता है, तो क्या ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई प्रावधान या निगरानी व्यवस्था है?
2: इसमें एक सिस्टम का ही इनबिल्ट मैकेनिज्म है। जैसे ही अगर कहीं भी एम्प्लॉयमेंट कम होती है जो बेस लाइन से, या थ्रेशोल्ड अगर उसका डाउन होता है, तो एम्प्लॉयी तो चलो 6 महीने के बाद अगर वो नहीं रहते हैं वहां एम्प्लॉयमेंट में तो उनको नहीं मिलेगा बेनिफिट, लेकिन साथ ही एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट कम हो जाती है। तो एम्प्लॉयर के लिए काइंड ऑफ डिसइंसेंटिव है कि अगर लोगों को निकाल रहे हैं, हटा रहे हैं, अगर वहां पर रिटेन नहीं कर रहे हैं, तो राधर एम्प्लॉयर को अभी ज्यादा इंसेंटिव इसमें है कि लोगों को रखें, रिटेन करें और उनको ट्रेन करें। तो केवल रिटेन करना ही नहीं होगा, जितने दिन लोग रहेंगे उनके लिए एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एम्प्लॉई के लिए भी फायदा, एम्प्लॉयर के लिए भी फायदा।
1: जी, विन विन सिचुएशन है दोनों।
2: विन विन है जी।
1: बिहार से जुड़े हैं मोहन पासवान जी।
3: नमस्कार सर।
2: नमस्कार,
3: मैं बसपुर दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ सर। सर मैं जानना चाहता हूँ कि छोटी छोटी कंपनियां लोगों के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाई है सर नए स्तर से। दूसरा है सर
2: जी, पूछें
1: जी मोहन जी।
3: सर भारतीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो सपना है 2017 तक, इसके लिए कौन से सूत्र तैयार किए गए हैं सर, एवं इसमें युवाओं के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाए गए हैं सर?
1: जनरलाइज सवाल पूछाना है उन्हें।
2: एक जनरलाइज सवाल है, बहुत सारी योजनाएं तैयार की गई हैं भारत सरकार के द्वारा, उनमें से एक योजना यह प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है जो 2047 के विजन को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों को बेनिफिट देते हुए, इंसेंटिव देते हुए ये कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार को जो सृजित कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, वर्कर जो ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए। तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को ओवरऑल इंसेंटिव करने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए ये एक बहुत अच्छी योजना है।
1: जी अक्सर मैं एक सवाल जो रहता है जहन में एमएसएमई क्षेत्र को लेकर, जो छोटे छोटे जो रोजगार सृजित करते हैं, तो देश में जो एमएसएमई क्षेत्र को रोजगार का जो प्रमुख हम स्रोत मानते भी हैं, तो इस योजना को एमएसएमई क्षेत्र को क्या लाभ मिलने की संभावना है इस योजना से?
0: तो इसमें एमएसएमई के ऊपर जो जो इसके ऊपर प्रोविजंस है, तो नॉर्मली ईपीएफओ जो लॉ है वो केवल एस्टेब्लिशमेंट्स विद एटलीस्ट 20 एम्प्लॉयज जो है उनके लिए मैंडेटरी है, बट आज के डेट में हमारे पास जो डेटा है उसे बहुत सारे ऐसे एमएसएमई हमसे जुड़े हुए हैं जिसका स्ट्रेंथ 20 से भी कम है, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि उनके लिए उनके छोटा साइज को ध्यान में रखते हुए, उनके कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए उनको केवल 2 एम्प्लॉयज एडिशनल एम्प्लॉयज जनरेट करने का उनको कंडीशन रखा गया है। तो 2 साल के पीरियड में उनको एटलीस्ट 2 नए एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है और उनको सस्टेन करना है, तो सारे एमएसएमएस इसमें बहुत बेनिफिट मिलने की आवश्यकता है।
1: तो विनिर्माण क्षेत्र को भी इस जो योजना से बहुत लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, तो वो किस प्रकार मिलेगा?
0: तो विनिर्माण क्षेत्र में एम्प्लॉयर्स जो है उनके लिए एडिशनल बेनिफिट है इसमें। सो जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से ये स्कीम चलता है, तो बाकी संस्थाओं को जो 2 साल तक जो बेनिफिट मिलता है हर एक महीने हर एक नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग में है उनको 4 साल तक इसके स्कीम के बेनिफिट्स मिलते हैं।
1: यदि कोई जो युवा है पूर्णेंदु जी, पहली बार नौकरी शुरू कर रहा है, तो उसे ईपीएफओ से जुड़ी कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा?
2: जो भी नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहली बात तो उनका एक फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू उमंग ऐप पे जब भी वो यूएएन जनरेट होता है तो वहां पे उनकी हम आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। जो पार्ट ए का जो बेनिफिट मिल रहा है इस स्कीम में कि फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू उनका होना पड़ेगा। सेकंड, उनका एक डीबीटी इनेबल्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए। सो आधार के साथ लिंक होता है, लेकिन आपको बैंक में साथ ही साथ अपना डीबीटी के लिए भी इनेबल करवाना पड़ता है। तो ये दोनों चीजों को अगर ध्यान में रखेंगे

0: जैसे ही ईपीएफओ में अगर आप जुड़ते हैं, ऑटोमेटिकली आप 6 महीने तक अगर आ रहे हैं यहां हमारे साथ सस्टेन कर गए एक एम्प्लॉयर के साथ, आपका सारा रिटर्न यहां आ रहा है, आपका कंप्लायंस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके बेनिफिट कैलकुलेट होकर आपके अकाउंट में चले जाते हैं।
1: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्र भान जी।
2: जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। प्रश्न ये है,
1: सवाल पूछे जी,
2: भारत रोजगार में कौन कौन से सेक्टर है?
1: कौन कौन से
0: इसमें सारे सेक्टर्स इंक्लूडेड हैं जो भी ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए हैं। ये स्कीम ईपीएफओ के थ्रू भारत सरकार चला रही है, वो भी इसलिए यहाँ पे हमारा आइडेंटिफिकेशन यूएएन के थ्रू करते हैं, कंपनीज कवर्ड हैं, तो बेनिफिट बिकॉज आइडेंटिफाइड लोगों को जाती है, तो जितने भी ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए संस्थान हैं उनके थ्रू ये सारा कुछ, ये सारी बेनिफिट जाती है।
1: जी, अगर किसी के मन में प्रश्न है कि या कोई कर्मचारी है नियोक्ता इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो कोई ऐसा पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर है जिस पर सीधा संपर्क किया जा सकता है?
3: हाँ, तो ये स्कीम के लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट है हमारा, pmvbrv.labor.gov.in। इसमें सारे स्कीम रिलेटेड सारे आपको विशेष उसमें मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अगर कॉल करके पूछना है तो टोल फ्री नंबर है 1-44-80-1-44-80। इसमें आप मंडे टू सैटरडे 10-6 आप कॉल करेंगे तो आपको किसी भी तरह की डाउट है तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं।
1: जी हाँ, 1-44-80 हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी शंकाओं का जो भी है निवारण पा सकते हैं। पूर्णेंदु जी, आपसे एक जाते जाते यही आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगी कि ईपीएफओ के आंकड़ों के आधार पर देखें तो पिछले कुछ वर्षों में औपचारिक रोजगार में क्या परिवर्तन देखने को मिले?
0: मैम, हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं और ईपीएफओ के आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में एक बहुत मेजर चेंज आ रहा है
1: जी।
0: वो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी हुआ करती थी वो काफी फॉर्मलाइजेशन की ओर बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में बिकॉज ऑफ दिस स्कीम हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि काफी ज्यादा बढ़ेगी और हम सबों को एक फॉर्मल इकोनॉमी, एक विकसित भारत देखने को मिलेगा।
1: जी हाँ, हमें विश्वास है कि आज की चर्चा से युवाओं को रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में उपयोगी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद आप दोनों का, पूर्णेंदु जी और प्रणय जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे साथ चर्चा की। श्रोताओं, आपका भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ जुड़े। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी सोमवार को एक नए मुद्दे के साथ। तब तक प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ।
1: मीडिया वेब पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

अभी आपने सुना समीर के गीत को, आवाज कुमार सानू की थी। संगीत दिया आदेश श्रीवास्तव ने और फिल्म का नाम शिकारी। इस गीत को पसंद किया था आप सबने। ग्राम बिलाताल, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से रामस्वरूप श्रीवास्तव, बीरपाल, राजकुमारी, नेहा, मेघा, वर्षा, रोशनी व गुड्डी। अमानगंज मोहल्ला, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से हीरा लाल राठौर, कन्हैया लाल, शनी और आपके परिवारजन। ग्राम रिबई, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से दिनेश सेन, कल्लू सेन और जयप्रकाश। नरसिंहगढ़ पूर्वा, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से मंगलनाथ लखेरा, कमलेश, अनुज और चिंकी। ग्राम लुगासी, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से संतोष पटेल, लक्ष्मी देवी, राहुल, राधा, आशा, विशाल, शिवांगी और सारांश। जिला बारा, राजस्थान से सुरेंद्र वर्मा, रेखा, मुस्कान और मौसम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब आपको सुनवाते हैं फिर मिलेंगे फिल्म में सोनू निगम और श्रेया घोषाल को।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में अभी आपने सुना फिर मिलेंगे फिल्म का गीत, संगीत दिया शंकर एहसान लॉय ने और गीत प्रसून जोशी का था। इस गीत के लिए फरमाइश प्राप्त हुई ईमेल पर आप सबकी। बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, माफिया भाई श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या माही पूजा चुटकी शरद और माखीजा परिवार। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डेकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डेकेस्ट्रो। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुस्ताक अहमद, मोहम्मद शकीर, मोहम्मद अलकमा, मोहम्मद अलतस्मस, मोहम्मद सादाब खत्री और रमेश गौड़। डाबरी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर और सनातन मंदूरकर। ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, सविता घनश्याम।

श्याम राव, हरिशंकर, रत्नेश व प्रशांत, पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। लीजिए अब सुनिए चोरी चोरी चुपके चुपके इस फिल्म का गीत।

समीर के गीत को अभी आपने सुना चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म में। आवाज थी अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की। इस गीत को सुनने के लिए पत्र भेजे आप सबने ग्राम गठेवरा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से देवेंद्र सिंह केपी सिंह ताज और मोहम्मद। राघविंद नगर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से लाखन सिंह लक्ष्मी देवी रेखा साधना दीपक अर्चना और राहुल। नौगांव जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से प्रज्ञा सिंह तोमर मोना नेहा अनुराग हृदयांश और मनु। जिला गुना मध्य प्रदेश से मनीष मनोज पप्पू शीला देवी रेखा रेणु और कमलेश। जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से विनोद श्रीवास कविता दीपांश और सृष्टि। मन भावन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवाते हैं हम दिल दे चुके सनम इस फिल्म का गीत।

हम दिल दे चुके सनम, इस फिल्म में अभी आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक को। गीत महबूब का था और ईमेल पर पत्र प्राप्त हुए आप सबके। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस निहारकर, निर्मला निहावकर और विशाल निहावकर। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। इस गीत के लिए पत्र भेजे आप सबने। ग्राम नूना जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से शिवेंद्र पटेल, अर्चना पटेल, भूपेंद्र, अंजलि, शिवा, आदित्य और उषा देवी। खटक्याना मोहल्ला जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से सरमल लाल रैकवार, संतोष, खेमराज, जेपी और राजू। ग्राम बनगाय जिला छतरपुर से दशरथ पटेल, श्रीमती कौशल्या, महेंद्र पटेल और छाया पटेल। ग्राम अंता जिला बारा राजस्थान से कन्हैया पंकज, अर्चना पंकज, अजय धानी और अन्वी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं सोनू निगम और साथियों की आवाज में। फिल्म का नाम हर दिल जो प्यार करेगा।

सोनू निगम और साथियों के स्वर में अभी आपने सुना हर दिल जो प्यार करेगा, इस फिल्म का गीत। इस गीत को सुनने के लिए ईमेल पर फरमाइश आई थी आप सबकी। ग्राम पोस्ट बिरखेरा, जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनी राम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी और पूजा तामोरिया। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। भाटापारा छत्तीसगढ़ से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री कुमारी, हव्या रजक कुमारी, तानिया रजक। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक, अली मुजफ्फर अली। शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वफ्फार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन रोजी, परवीन रोजी, परवीन बिट्टू भैया, साजदा।

गुलजार के गीत को अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में, संगीत दिया एआर रहमान ने और फिल्म का नाम दिल से। इस गीत को सुनने के लिए डाक द्वारा पत्र भेजे आप सबने। मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा। सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक और हर्षित शर्मा। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ, साधना और निवान शर्मा। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले। कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार और हैप्पी राय। इस गीत के लिए ही ईमेल पर पत्र प्राप्त हुए आप सबके। चंदन नगर सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली, सुरेश नारंग और साथी। शिवकोठी ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश से राकेश पप्पू सेन, निशार सेन, द्वारका बाई और आपके परिवारजन। इंदौर मध्य प्रदेश से गिरधारी लाल चौधरी, मनीषा बाई। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। इस्लामाबाद महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार और साधना पवन पाटिल। आइए अब सुनते हैं कहीं प्यार ना हो जाए इस फिल्म का गीत। आवाज कमल खान और अलका याग्निक की है, धुन तैयार की हिमेश रेशमिया ने और गीत सुधाकर वर्मा का।

कहीं प्यार ना हो जाए, इस फिल्म में अभी आपने सुना कमाल खान और अलका याग्निक को। धुन तैयार की हिमेश रेशमिया ने और गीत सुधाकर वर्मा का था। इस गीत को सुनने के लिए पत्र भेजे आप सबने। भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक, श्याम कुमार, प्रमिला श्याम कुमार, आसमा, दीपक, अनुश्री और श्याम कुमार। रामगंज खंडवा से विजय, महोबिया, कविता, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, अजय, अनाया, सपना, शिवी, सलोनी, पिंटर बाबू, अशोक, अनिल, सोनी और सुदामा। ग्राम खकल, तहसील कोट, जिला जालौन से आकाश विश्वकर्मा और विकास विश्वकर्मा। एयरपोर्ट रोड, बंदरा नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से नारायण, गणेश, कीर्ति, देवी, देविका और स्वाति। इस गीत को सुनने के लिए ही ईमेल पर पत्र प्राप्त हुए थे आप सबके। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया और अपार डिंगिया। कोटवा, नारायणपुरा, बॉबी पट्टी, बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार, हैप्पी और राय परिवार। गांधी पार्क, मनपुरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से मनोज नामदेव, मयंक नामदेव, खुशबू, ममता, रेखा और नामदेव परिवार। दुर्गा कॉलोनी से राजू मिगलानी, बबीता सुभाष और बप्पू डप्पू। कुर्मा, जांजगीर चंपा छत्तीसगढ़ से दिलदार मिरी, ज्योति जानवी और दीक्षांतु मिरी। आइए कार्यक्रम के अंत में अब आपको सुनवाते हैं बिच्छू फिल्म का गीत। आवाज हरि आनंद और जसविंदर नरूला की। संगीत दिया आनंद राज आनंद ने और गीत समीर का है। इस गीत को सुनने के लिए ईमेल पर फरमाइश आई है आप सबकी। ग्राम लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी, सलोनी और बाबू पेंटर। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जशी मेहित्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और शान्या रामटेके। इसी पत्र के इसी

बातचीत के लिए पत्र प्राप्त हुए हैं आपके। ग्राम ममना जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू अंजना वर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। जिला छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार और वैशाली अनिल। तो आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं बिच्छू फिल्म का गीत।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। मीडिया वेब पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रिले करते हैं अब दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं। इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पर सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया।

0: रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल एम पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh this afternoon. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching centre located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary Home will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured will receive 50,000 rupees each. Prime Minister Narendra Modi has stated that India is a fast-growing and credible economy and has become a reliable power. Mr. Modi said this while addressing a summit organized by a private media house in New Delhi today. He noted that several initiatives have been launched in the last 12 years with the motive of Nation First. Mr. Modi asserted that Nation First is India's highest guiding principle today.
4: Bharat jo kar raha hai.